ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तदनुसार 25 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता हमारा आज का दैनिक प्रसारण। आप सबों का आज का दिन शुभ हो। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र एमएसी मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। दो दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध

0: लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 में हैं। आइए सुनते हैं चिंतन आत्मविश्वास।
2: आज की ये सुबह कितनी सुहावनी है। सुनहली धूप में सारी धरती खिल उठी है। धीरे धीरे बहती हुई हवा के झोंके आ रहे हैं। पेड़ों की हरी हरी पत्तियां मस्ती में झूम रही हैं। चिड़ियां चहक रही हैं। फूल और पौधे मानो खुशी से नाच रहे हैं। छोटे छोटे किलकारियां भरकर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपका हृदय इस आनंद मेले को देखकर हर्ष का अनुभव नहीं करता? क्या इस विराट संगीत समारोह में भाग लेने के लिए आपका मन आतुर नहीं हो उठता? तो समझ लीजिए, आप अपने जीवन में अनायास प्राप्त एक महान अवसर से हाथ धो रहे हैं। आप आज की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आपका शरीर आज की दुनिया में भले ही हो, पर मन अतीत के भोगे हुए क्षणों में उलझा है या भविष्य के बीहड़ जंगलों में भटक रहा है। और यही वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सुख चैन से जीने नहीं देती। हम वर्तमान को भोग नहीं सकते, लेकिन अनागत या अतीत के सपनों का निरर्थक दाना बुनने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डालते हैं। फिर वर्तमान को अगर हम जीते भी हैं तो हारे थके मन से, मानो जीना नहीं चाहते, विवश होकर जीते हैं। लेकिन ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई। अगर हुई भी तो उधार की हुई, अपनी नहीं। क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं, जहां अपना कहने लायक भी कुछ नहीं, और जहां अपना कहने लायक कुछ नहीं हो, वहां भला सुखी कैसे मिल सकता है? कारण स्पष्ट है, जिंदगी सदा वर्तमान है। बीता हुआ कल मर चुका है, वो कभी लौटकर आने वाला नहीं। आगामी कल अभी आया नहीं, फिर हाथ में तो वर्तमान ही है। कोयल जब वसंत ऋतु में आम की डाली पर पंचम स्वर अलापती है, तब क्या उसके सामने अतीत की कोई घटना रहती है? या गुलाब के फूल जब बाग बागीचों में अपनी मुस्कान बिखेरते हैं, तब क्या वे भविष्य का कोई सुनहला स्वप्न देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इस तरह सहज रूप से मुस्कुराने का रहस्य उनके वर्तमान पलों की तन्मयता में है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ को जब गीतांजलि नामक काव्य कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचकर बोला, क्या तुमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है जो तुमने अपनी कविताओं में बार बार उसके गुण गाए हैं? रविंद्रनाथ उस समय तो कोई उत्तर नहीं दे सके, किंतु वो वृद्ध व्यक्ति भी सहज ही पिंड छुड़ाने वाला नहीं था। बार बार आ जाता और उनसे वही प्रश्न कर बैठता। एक दिन की बात है, कवि गुरु प्रातःकाल के भ्रमण से लौट रहे थे कि उन्हें सहसा एक विराट दर्शन की अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि वर्षा ऋतु के जो बादल रात भर बरसे हैं, अभी आकाश से कहीं दूर चले गए हैं और चारों ओर सुनहली धूप भी हंस रही है। सूर्य का प्रतिबिंब हजार हजार टुकड़ों में नीचे धरती पर पानी से भरे अनगिनत जलाशयों पर पड़ता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब अपने आप में पूरा है, एक भी खंडित या विकलांग नहीं है, सब में पूरा सूर्य उतरा है। रविंद्रनाथ इस अद्भुत दृश्य को देखकर चमत्कृत से रह गए। उनकी प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ा। जिस पथ से वो घर लौटते, उसी के किनारे वो वृद्ध व्यक्ति भी रहता था। सदा की भांति आज भी उसने कविवर को अपने घर के सामने से जाते देखा और देखते ही फुर्ती से दौड़कर उनको घेर लिया। किंतु इसके पहले कि वो अपने प्रश्न को दोहराए, रविंद्रनाथ की अपूर्व मस्ती भरी मुस्कुराहट को देखकर ही इतना मुग्ध हो गया कि उसके मुंह से निकल पड़ा, आज प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मुखमंडल पर आनंद की आभा से ही मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सचमुच वो दिन धन्य होता है जब हम आज की अनुभूति में आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है, सही मायने में हम तभी जीते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन आत्मविश्वास, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 में आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहीन राम। सच्चे विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलती।

प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते।

जब तक हमें ईमानदारी, भक्ति और विश्वास है, तब तक प्रत्येक कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है।

ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर स्वेच्छा से अपने भक्त के निस्वार्थ प्रेम से बंधे रहते हैं। जब भगवान के प्रति प्रेम यानी भक्ति जागृत होती है, तब अज्ञानता और अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाते हैं।

0: जब बुरा वक्त तो सबका आता है कभी न कभी, लेकिन जो धैर्य रखता है वो हमेशा निखर कर बाहर आता है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आए तब ईश्वर पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज बस इतना ही। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 72

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना गऊएं मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

सात बजे आप सुनेंगे 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज का विषय होगा आंखों के लिए किन किन बातों का रखें ख्याल। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर ए एन सिंह। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संगीत। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और

हमारे दिल्ली केंद्र से और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। दिन के 10 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आज के चर्चा का विषय हुआ राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा उद्देश्य एवं महत्व। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को और 1:10 में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को और 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। पांच बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। आज के चर्चा का विषय होगा मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बचाने के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन क्या है। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर युवाओं के लिए संबोधित कार्यक्रम युवानी आप सुनेंगे। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जानकार और 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 8 बजे आप सुनेंगे फार्मेसी के तौर पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पोटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से और रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम को हमारे मुंबई केंद्र से।

रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि के 11 बजकर 10 मिनट पर हमारे स्टूडियो से।

तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आइए सुनते हैं शिव भजन।

0: महादेव की
1: जय हो।
0: देवों में महादेव की महिमा अपार है, इनका अलख जगाओ तो बेड़ा पार है।
1: जय हो जय हो जय हो।
0: सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की महिमा।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक भेंट वार्ता। विषय है आंखों के लिए किन किन बातों का रखे ख्याल। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर एएन सिंह और भेंटकर्ता श्वेता रानी।
1: श्रोताओं, हमारी आंखें हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसके लिए हमें अपनी आंखों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे उपकरण हमारे पास ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारी आंखों में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आंखें हमारी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में हम विस्तार से जानने के लिए आज हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एएन सिंह यानी डॉक्टर अशिक नारायण सिंह। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को। नमस्कार
1: सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आंखों की आम समस्याएं क्या हैं?
2: आजकल के जिंदगी की व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे ज्यादा समस्या जो आ रही है, दो तरह की समस्या आ रही है जी। एक तो एलर्जी और दूसरी आंखों का थकान। तो ये दो बहुत ज्यादा कॉमन है।
1: तो एलर्जी किस वजह से होती है सर, और किस तरह से परेशानी होती है अगर आंखों में एलर्जी हो जाए?
2: सबसे पहले तो पॉल्यूशन लेवल हाई होने से एलर्जी की समस्या ज्यादा होती है। बाहर के धूल धुआं, तेज हवा, ये सब में एक्सपोजर होते रहने से एलर्जी की समस्या ज्यादा होती है। दूसरा कारण होता है आंखों से लगातार गैजेट्स का, कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते समय पलकों का कम झपकना। तो पलक यदि कम झपके तो जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, एलर्जेंस है, उसका कॉन्टैक्ट पीरियड ज्यादा रहता है, तो जिसके कारण

0: एलर्जी की समस्या भी आजकल ज्यादा बढ़ती है।
1: तो एलर्जी अगर आंखों में हो जाए सर, तो किस तरह की परेशानियां हमें दिखाई पड़ती हैं?
0: आंखों में खुजलाहट होना है, आंखों में लालीपन आना, बहुत ज्यादा पानी का आना, जलन होना, ये सारी समस्याएं आती हैं एलर्जी में। और मैं साथ ही बचाव का उपाय भी बताता चलूं, तो सबसे पहली चीज है आंखों को मलना नहीं है। जब मलेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, एलर्जी बढ़ती जाएगी, फिर चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
1: जी जी।
0: तो इसलिए आंखों को कभी मले नहीं। तो जब मलने जैसी इच्छा होती है तो उस समय क्या करना है, हाथ साबुन से साफ कीजिए और साफ पानी से अपने आंखों को धो लीजिए। ये घरेलू तरीका है जिससे आप एलर्जी, किसी भी तरह की आंख की एलर्जी को बचा सकते हैं, कम करते जा सकते हैं।
1: सर, आंखों की थकान के बारे में आपने कहा, तो थकान होने से आंखों को क्या परेशानी हो सकती है?
0: आंखों का थकान, पहले मैं इसके कारण के बारे में बात करूंगा। गैजेट्स जब आजकल हम लोग उपयोग करते हैं, खास करके मोबाइल का, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के कारण मोबाइल का उपयोग काफी बढ़ा है, तो इसमें दो तीन चीज गड़बड़ी क्या होती है। एक तो एक जगह हम लोग लगातार लंबे समय तक देखते हैं, दूसरा पलकों को कम झपकाते हैं, तीसरा पॉस्चर गलत होता है, बैठ करके काम नहीं करके थोड़ा लेट करके देखने लगे, झुक करके करने लगे, तो इसमें आंखों में ज्यादा ताकत लगता है, तो उसके कारण आंखों में दर्द, माथे में दर्द, और खास करके इस तरह का दर्द सवेरे आराम रहेगा जब आप सो के उठेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, दिन भर काम किया तो शाम होते होते दर्द ज्यादा होगा, तो ये थकान का लक्षण।
1: सर, आपने दर्द की बात कही है, तो कहीं ये दर्द माइग्रेन वगैरह का भी कारण बन सकता है क्या आगे चलकर?
0: नहीं, माइग्रेन दूसरी समस्या है, ये कारण नहीं बनता है, लेकिन जिन्हें माइग्रेन है उनको माइग्रेन का दर्द भी बार बार होगा और ये मिमिक करेगा, आईस्टन आंख से संबंधी जो थकान है वो माइग्रेन के दर्द को मिमिक करेगा, लोग ज्यादा परेशान होंगे।
1: जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गंदे हाथों से भी आंखों को छू लेते हैं, या फिर कुछ कचरा अगर आंख में चला गया है तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट पानी का छींटा मारते हैं, तो इस तरह करने से आंखों को क्या नुकसान पहुंच सकता है?
0: देखिए, जैसा पहले मैंने बताया एलर्जी से बचाव के लिए कि आंखों को कभी छूना मलना नहीं चाहिए, जब भी आंख को छूना है हाथ साबुन से साफ करके केवल आंखों को साफ करने के लिए छूना है, और साफ पानी से आंखों को धोना एक अच्छा तरीका है, ये हल्की फुल्की एलर्जी को कंट्रोल करता है। छूना कभी भी नहीं, जब भी छूना है हाथ साबुन से साफ करके।
1: जी सर, हम जानना चाहेंगे कि आंखों का ऑपरेशन का जो नौबत आता है तो वो किन किन परिस्थितियों में आता है सर?
0: सबसे ज्यादा कॉमन है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक लेवल से ज्यादा होने पे जब लोगों को अपने दैनिक काम में दिक्कत होने लगती है, तब उस तरह के मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन की नौबत आती है। हल्की फुल्की मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने दैनिक कार्यकलापों में यदि दिक्कत होने लगे, कुछ खतरा हो, डर हो गिर जाने का, चोट लगने का, तब उसमें ऑपरेशन की नौबत आती है, ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे चीज होते हैं जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सबसे कॉमन मोतियाबिंद।
1: तो मोतियाबिंद होने के क्या कारण है सर?
0: ये उम्र जनित है, और साथ में अपने लाइफ स्टाइल रिलेटेड, जैसे बहुत ज्यादा कोई कड़ी धूप अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर होंगे, या फिर धुआं लगेगा, या फिर डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी रहेगी, हरी सब्जी वगैरह ना खाएंगे, तो इस सब कारण से थोड़ा जल्दी प्रेसिपिटेट हो सकता है, अदरवाइज उम्र के साथ ये धीरे धीरे होता ही है।
1: सर, ऑपरेशन के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो परेशानी है वो दोबारा ना हो?
0: जब ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन के बाद जब डिस्चार्ज का समय आता है, तो जहां भी ऑपरेशन कराते हैं डॉक्टर या उनके जो स्टाफ हैं वो डिटेल एक चार्ट देते हैं या बताते हैं, जिसमें वो काफी चीजें, जैसे आंखों को किसी भी तरह के चोट से बचाना, आंखों को छूना नहीं है, जिस आंख का ऑपरेशन कराया है उस करवट नहीं सोना है शुरुआती कुछ दिनों में, नहाने के लिए बाल को धोना नहीं है, छोटे बच्चों को गोद में नहीं लेना है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और वो जो भी सलाह ऑपरेशन के बाद दी जाती है उसको बहुत ध्यान से सुनना है और उसका पालन करना है।
1: जी। सर, कई बार ऐसा होता है कि आंखों के ऑपरेशन के बाद एक आंख की ऑपरेशन हुई तो दूसरे आंख की रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसके क्या कारण है?
0: देखिए, ये कारण इस तरह का ऐसा कोई नहीं है कि एक का ऑपरेशन हुआ तो दूसरे का कम होने लगा, इसको दूसरी तरह से समझे, मोतियाबिंद उम्र के साथ समय के साथ होना है, जिस एक आंख में ज्यादा मोतियाबिंद हो गया उसका आपने ऑपरेशन करा लिया, दूसरे आंख में फिर समय के साथ आगे बढ़ना है, आगे होना है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करा लिया इसलिए दूसरे आंख में तेजी से बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है।
1: तो सर आंखों में रतौंधी भी होने की समस्या होती है, तो ये किस कारण से होती है और इससे बचे रहने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए?
0: रतौंधी के दो तरह के कारण होते हैं। एक तो कारण है विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी, तो वो ना होने देना चाहिए। इसके लिए जितने भी रंगीन फल सलाद हैं, गाजर, पपीता, टमाटर, आम के समय में आम,

0: तो ये जितने भी रंगीन फल है, ये विटामिन ए का रिच सोर्स है, हरी सब्जी साग ये सब रिच सोर्स, तो वो रेगुलर खाना चाहिए। दूसरा कारण होता है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें रेटिना में जो रात के समय देखने के कण होते हैं वो नहीं, पिगमेंट्स वो फॉर्मेशन उसका नहीं होता है, तो उसका अभी कोई इलाज आया नहीं है।
1: अच्छा, सामान्य रतौंधी का इलाज संभव है?
0: विटामिन ए की कमी से यदि हो रहा है तो उसमें विटामिन ए सप्लीमेंट डॉक्टर लिखते हैं।
1: सर, आपने कहा कि एक उम्र के बाद मोतियाबिंद ज्यादातर होने की संभावना हो जाती है, तो लंबे समय तक आंखें हमारी स्वस्थ रह सकें इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और खानपान में स्पेशली हमें किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए?
0: जो भी शारीरिक दिनचर्या आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, सारे शरीर को, वही दिनचर्या आंखों को मोतियाबिंद से भी लंबे समय तक रोक के रखने के लिए भी वही दिनचर्या की आवश्यकता होती है, जिसे दैनिक आपका जो कार्यकलाप है, टहलना, प्राणायाम और खाने में हरी सब्जी साग वगैरह ये सब रेगुलर खाना, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में लेना, फल सब्जी सलाद के रूप में, तो वही चीज जो शरीर को स्वस्थ रखता है वही चीज मोतियाबिंद को भी लंबे समय तक रोक कर रखता है।
1: सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑनलाइन जो क्लासेस चलते हैं जिसकी वजह से बच्चों को स्क्रीन से ज्यादा जुड़ा रहना होता है, बड़े लोग भी बहुत ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं सर, चाहे वो कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इस तरह की चीजें, तो कितने लिमिट टाइम तक गैजेट्स का प्रतिदिन अगर इस्तेमाल किया जाए तो आंखों में बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं हो सकती, इसके बारे में थोड़ा?
0: ये अलग अलग हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है, इसका कोई एक पैमाना नहीं है कि ये एक घंटा या 15 मिनट या 2 घंटे, लेकिन जिनको भी जितना काम है, जो एसेंशियल वर्क है, आवश्यक काम, तो आवश्यक काम छोड़ करके अनावश्यक एंटरटेनमेंट के लिए लगातार लंबे समय तक यूज करना उचित नहीं है। और जब वर्क कर रहे हैं तो उस समय भी कुछ बातों का ख्याल रखना है, ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी है बीच बीच में रेस्ट लेना। जब भी आप वर्क करते हैं गैजेट्स पे तो बैठ के कीजिए, पलक झपकाते हुए 1 मिनट में 15 से 20 बार पलक झपकाइए, 15 मिनट वर्क के बाद 20-30 सेकंड के लिए 20 फीट या उससे ज्यादा दूर देखिए, 1 घंटा जब वर्क हो जाए तो 5-7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, इस तरह से अपने गैजेट्स के यूज को डिसिप्लिन वे में कीजिए तो थोड़ा लंबे समय तक वर्क कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल वर्क को हटा दीजिए, जो जरूरत नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए केवल कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है शारीरिक श्रम करना, हाँ वो ज्यादा अच्छा है शारीरिक स्वास्थ्य।
1: आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि बहुत सारे लोग हैं कि सोते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं या फिर सो करके तुरंत उठ करके मोबाइल देखते हैं, तो इससे आंखों को क्या परेशानी हो सकती है?
0: देखिए, ये एक तरह से इसको विडंबना कहेंगे कि दिन भर जब हम काम करते हैं, जो आजकल ज्यादातर लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो आंख के जरिए ही काम करते हैं, चाहे कंप्यूटर पे काम करें चाहे फाइल वर्क करें, आंख का काम होता है, आंख का काम सवेरे सो के उठने से रात सोने तक होता है। शरीर आपका बैठा हुआ है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप रेस्ट के लिए आते हैं तो उसी शरीर को फिर से आप आराम दे रहे हैं लेकिन आंख को फिर काम पे लगा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। बेहतर ये है कि दिन भर जब आपने आंख से काम लिया, शरीर को आराम दिया, तो आप जब एंटरटेनमेंट की बात आती है, रात सोने के समय की बात आती है, तो उसके पहले थोड़ा वॉक करें, पहले आंखों का काम न करें, आंखों को रेस्ट दें।
1: तो सर, आपने अपना कीमती समय दिया और आंखों की देखभाल से संबंधित आपने बहुत सारी जरूरी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका और सभी श्रोताओं का धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्यवार्ता के अंतर्गत, एक भेंटवार्ता विषय था आंखों के लिए किन किन बातों का रखे ख्याल। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर ए.एन. सिंह और भेंटकर्ता श्वेता रानी। हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं की आप इस भेंटवार्ता का अवश्य लाभ लेंगे, और अगर आप लंबे समय तक अपने कंप्यूटर के साथ आप बैठे हैं या लैपटॉप के साथ, तो अनावश्यक अपने आँखों को परेशानी से होने वाले नुकसान से बचाएं और कम से कम जो है स्क्रीन टाइम आप दें, और यही जो है सो हम अपने आँखों को बचाने के लिए इन बातों का ख्याल रख सकते हैं। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवाने जा रहे हैं शंकर महादेवन के गाए गीतों को।

0: दोस्तों कहीं जाइएगा मत, आप हमारे साथ बने रहेंगे कार्यक्रम गीत संगीत में। एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हजारीबाग को और आप सुन रहे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत संगीत। आइए सुनते हैं शंकर महादेवन के गाए गीतों को इस कार्यक्रम में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और साथियों को। इसी के साथ गैर फिल्म के एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके ठीक बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
3: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
4: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। IMD का कहना है कि

0: आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
2: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट। शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, IIT, IIM, NIT और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत UPI के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन यंग डिप्लोमैट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स लेवल एंगेजमेंट इन द कंट्रीज ऑफ पोस्टिंग एंड डीपन इंडियाज कनेक्शन विद लोकल कम्युनिटीज। Union Home Minister Amit Shah asked all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP

0: राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में रिम्स को शामिल करने के लिए अस्पताल प्रबंधन और बीमा प्रदाता कंपनी के बीच एमओयू। रांची के कोतवाली थाना में एक छात्रा ने झामुमो के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। नेता प्रतिपक्ष ने झामुमो पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में रुक रुक कर हो रही बारिश, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हजारीबाग में आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की जनजातीय परंपरा हमारी सांस्कृतिक विविधता की महत्वपूर्ण धरोहर है। श्री गंगवार ने कहा कि जनजातीय कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़कर संरक्षण के साथ आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी पहल कारीगरों और महिला उद्यमियों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ रही है और ऐसे उत्सव जनजातीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ साथ परंपराओं के संरक्षण, संस्कृति विकसित करने का काम किया है। हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पाद केवल वस्तुएं नहीं है, इनके पीछे पीढ़ियों से चली आ रही कला, कौशल और अनुभव की कहानी जुड़ी हुई है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इन परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आधुनिक बाजार और नई अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया जाए।
0: जनजातीय गौरव उत्सव में देश भर से महिला उद्यमी हजारीबाग पहुंची और स्टॉल लगाया। महिला उद्यमियों ने कहा कि यह आयोजन बेहद सकारात्मक रहा। एक महिला उद्यमी ने कहा कि यहां व्यवसाय से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं।
2: अपने बनाते सामान और इस तरह के स्टॉल मिलता है और वहाँ पे लगाते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे जिस तरह के स्टॉल हम लोग को मिले हैं, बाहर बाहर से भी महिला लोग आई हैं और अपने सामान को प्रदर्शित कर रही हैं और सेल भी अच्छा है और बहुत अच्छा लगा है कि महामहिम हमारे राज्यपाल जी हमारे उनके हाथों से मुझे मिला है सर्टिफिकेट।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की पहली बैठक हुई, जिसमें वेटलैंड संरक्षण, सीमांकन और वैज्ञानिक प्रबंधन को नई दिशा देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वेटलैंड की पहचान, सत्यापन, डिमार्केशन, नोटिफिकेशन और डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि ये क्षेत्र जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के महत्वपूर्ण आधार हैं। बैठक में बताया गया कि इसरो एटलस के आधार पर राज्य में 2119 संभावित वेटलैंड चिन्हित हैं, जिनका जिला स्तरीय समितियां भौतिक सत्यापन करेंगी और अतिक्रमण रोकथाम तथा मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर सहमति दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। रिम्स रांची के एकेडमिक काउंसिल की बैठक में शैक्षणिक विस्तार, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना और नए पाठ्यक्रमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में 250 एमबीबीएस सीटों के अनुरूप फैकल्टी और अन्य मानव संसाधन की उपलब्धता, इंटीग्रेटेड एमडी पीएचडी कार्यक्रम, ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के नए कार्यक्रम तथा एमएससी नर्सिंग शुरू करने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। वहीं राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रिम्स को एम्पैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में शामिल करने के लिए रिम्स प्रबंधन और बीमा प्रदाता कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत 1 सप्ताह में औपचारिकताएं पूरी कर सेवाएं शुरू की जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: रांची के कोतवाली थाना में एक छात्रा ने झामुमो के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में छात्र आंदोलन के दौरान पुतला छीनने, छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। छात्रा ने कहा कि वह डरी हुई थी, इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराने में देर हुई।
1: मेरे तरफ से सवाल करना चाहती हूँ, मैं जब रो रो के चीख चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही हूँ 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया, क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज में?
0: इस दौरान थाना परिसर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक अमर बाउरी, पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सहित कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर छात्र आंदोलन को दबाने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया।
2: बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने, उसको कुचल दे। पहले तो बच्चों को झांसा में डालकर जयपाल सिंह स्टेडियम से धरना और भूख हड़ताल को उन्होंने तोड़वाए, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे, उसको भी लाठी डंडे से और भी गुंडों के द्वारा, तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी।
0: पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय परिसर में जेएसएलपीएस सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित राखी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। इस वर्ष जिले के लेस्लीगंज, पड़वा और नवा बाजार प्रखंडों में महिलाओं द्वारा 40,000 राखियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों से स्वदेशी राखियां खरीदने की अपील की। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश और अगले 5 दिनों तक राज्यभर में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत झारखंड की ओर से रांची में आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें 27 अगस्त को प्रधानमंत्री के देशभर के युवाओं के लिए प्रस्तावित वर्चुअल संबोधन के साथ खेलो इंडिया संवाद, युवा सहभागिता और युवा कनेक्ट से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार और जेपीएससी को नोटिस। हिंदुस्तान ने पाकुड़ में कई बांग्लादेशी नागरिकों के वोटर बनने की आशंका पर चुनाव आयोग द्वारा जांच के निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने रांची स्थित रिम्स में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 20 बेड आरक्षित किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने रांची के एक डॉक्टर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। जनजातीय कला और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की हुई बैठक। वेटलैंड की पहचान, सत्यापन और डेटाबेस तैयार करने का दिया निर्देश। रिम्स एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में रिम्स को शामिल करने के लिए अस्पताल प्रबंधन और बीमा प्रदाता कंपनी के बीच एमओयू। रांची के कोतवाली थाना में एक छात्रा ने झामुमो के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। नेता प्रतिपक्ष ने झामुमो पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 8:44 और 29 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना जिसे हमने लिया है अपना घर से। आवाजें मुकेश और गीता दत्त की हैं।

0: दोस्तों, अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आधे फिल्म से। लेकिन इस गीत से पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुबह से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। इसके लिए कर बस थोड़ा सा इंतजार।

चित्रलोक कार्यक्रम के में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से ये गाना। केके की आवाज में विशाल ददलानी के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: अरे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45
1: पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मर्डर थ्री, इस फिल्म से शफकत अमानत अली की आवाज में सईद कादरी के बोल और प्रीतम का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, चांदनी चौक टू चाइना इस फिल्म से। शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में रजत अरोड़ा के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

ये है देश की सुरील धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजेता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे, जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत

0: हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों

अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वेयर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामी बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
4: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

0: दोस्तों, कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार कीजिए प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार भी। दोस्तों, अगर दिन की शुरुआत एक अच्छे सोच के साथ हो, गीत संगीत के साथ हो, तो दिन बहुत ही अच्छा बीतता है, एक नई ताजगी का एहसास होता है। तो चलिए हम आपके इसी जरूरतों को पूरा करते हैं। आज हम आपसे कुछ जानकारी भरी बातें और साथ ही मनोरंजन में ढेर सारी गीतों को हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आज बताते हैं आपको मौसम का हाल। आज तापमान जो है अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो होगा वो 23 डिग्री सेल्सियस होगा। आज भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। तापमान में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और शहर में अगर हो रहे अनुष्ठान की बातचीत करें तो भगवद गीता का पाठ किया जाएगा झील सेंटर में संध्या 6:30 पर। और साथ ही दोस्तों, आज उपायुक्त का जनता दरबार भी लगेगा समाहरणालय में सुबह 10 बजे से, यानी अब शुरू हो चुका है। सराफा बाजार की अगर हम बातचीत करें तो सोना 22 कैरेट का 1,53,200 रुपये और चांदी प्रति किलो 2,55,000 रुपये किलो होगा। इस जानकारी के बाद अब हम दोस्तों एक गीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद हम फिर जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। पहला गाना फिल्म अलग अलग से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको

दोस्तों, इस गीत के बाद अब हम एक बार फिर से जानकारी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं खबरों में, अखबार में छपी खबरों के अनुसार देश दुनिया का हाल। सबसे पहले बातें करेंगे हजारीबाग भास्कर की, तो देखते हैं किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है और कौन कौन ऐसी खबरें जो हैं वो प्रमुख जान पड़ती हैं। दोस्तों, इन दिनों वर्षा से कहीं अनावृष्टि तो कहीं जो है अधिक वृष्टि हो रही है। कोयला परियोजना के 1400 हेक्टेयर भूमि पर धान रोपनी धीमी। अंचल क्षेत्र में खुले नॉर्थ वेस्ट पकरी बरवाड़ी के रेडारी चट्टी पर यातू और चंद्रगुप्त कोयला खनन परियोजना के कारण अपर्याप्त बारिश के बावजूद 100% धान व मकई की खेती नहीं हो सकी है। जिला कृषि विभाग ने केरेडारी अंचल से बगैर जानकारी लिए पुराने लक्ष्य को ही दोहरा दिया है। गोधिया में चार दिनों से है हाथी लोगों में दहशत। टाटीझरिया प्रखंड के डहरभंगा पंचायत अंतर्गत गोधिया गांव में पिछले चार दिनों से एक जंगली हाथी डेरा जमाए हुए। इसी वजह से पहले भी और पिछले चार दिनों से पूरे क्षेत्र के लोग डरे सहमे और दहशत में हैं। नशा तबाह कर देता है घर परिवार से टूट जाता है संबंध। कटकमदाग प्रखंड सिक्के बानादाग उच्च विद्यालय के प्रांगण से दुर्गा मंडप बानादाग तक रन फॉर नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ के बाद दुर्गा मंडप के प्रांगण में सभा रखेगी। इसमें अतिथियों ने नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। जिले में 1485 सरकारी स्कूल में तड़ित खराब, विद्यार्थियों की जान को खतरा। ये कहना है हजारीबाग भास्कर का। जिले के 1485 सरकारी स्कूलों में तड़ित चालक लगाने का निर्णय सरकार ने लिया। यह तड़ित चालक की लागत जो है 36,000 रुपये रखी गई। धन तो आया पर सभी स्कूलों में तड़ित चालक नहीं लगे। सभी स्कूलों में लगे भी तो वहां खराब रख रखाव के अभाव में वो खराब हो गए। नतीजा, आज तक एक भी स्कूल वज्रपात से सुरक्षित नहीं है। केबी महिला कॉलेज परिसर में एक और छात्रावास बनेगा, यह कहना हजारीबाग भास्कर का। उपायुक्त हेमंत सती ने सोमवार को केबी महिला कॉलेज परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने आधारभूत संरचनाओं और छात्राओं की आवश्यकताओं की जानकारी ली। दोस्तों, इस जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में आई लौटते हैं और सुनते हैं नितिन मुकेश को फिल्म सनम बेवफा में।

इस गीत के बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे अखबार में छपी खबरों के मुताबिक देश दुनिया का हाल क्या है वो जानते हैं, प्रभात खबर क्या कुछ कहता है जानते हैं और किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। जेपीएस पुनर्गठन प्रस्ताव को आज मंजूरी दे सकती है सरकार। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन का प्रस्ताव आ सकता है। इसमें अध्यक्ष से लेकर सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि पिछली बार हुई विशेष कैबिनेट में परीक्षा सुधार समिति आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी। श्रावणी मेले की अंतिम सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवरियों की भारी उमड़ी भीड़। रविवार रात से ही कांवरिये कतारबद्ध होने लगे थे। सोमवार को बाबा मंदिर में 261,832 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। राज्य में 28 तक बारिश का अनुमान। रांची में 27 को भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में 28 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 27 अगस्त को रांची में हुए भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि रांची में इसके दौरान छिटपुट बारिश लगातार होती रहेगी। जमीन विवाद से नाराज युवक चढ़ा टावर पर। विवाद का निष्पादन नहीं होने से नाराज युवक मनोरंजन कुमार सिंह सोमवार को दिन के लगभग 10:45 पर जियो कंपनी के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक विवादित जमीन पर बन रहे घर को तोड़ने और निर्माण करने वाले की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। इसके साथ ही न्याय नहीं मिलने पर टावर से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। वर्क फ्रॉम एनीवेयर में लंदन मियामी से आगे निकली मुंबई। वर्कप्लेस के मामले में शीर्ष स्थान पर रहने के बाद अब भारत को वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में पहली बार स्थान मिला है। देश की वित्तीय और कॉरपोरेट राजधानी मुंबई ने अपनी कार्य संस्कृति, खान पान, फ्लेक्सिबल वर्कप्लेस, रहने की सुविधा आदि सुविधाओं के साथ हाइब्रिड वर्क कल्चर के कारण अंतर्राष्ट्रीय वर्कप्लेस समूह द्वारा जारी 2006 के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर बन गया है। मुंबई में 77 अंकों के साथ इस इंडेक्स में पहली बार जगह बनाई है। इस जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब को।

इस गीत के बाद एक बार फिर से जानकारी की तरफ हम लौटते हैं दोस्तों, और जानते हैं कि हिंदुस्तान अखबार क्या कुछ कहता है और किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। मानव हाथी संघर्ष रोकने को बनाए योजना हेमंत, ये कहना है हिंदुस्तान अखबार का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के भीतर सभी हाथी कॉरिडोर की माइक्रो मैपिंग की जाए, साथ ही ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें मानव एवं वन्य जीवों के बीच एक के संघर्ष को रोकने में सहायक हो। 5 दिन काम की मांग को लेकर 11 को बैंकों में हड़ताल। लंबित मांगों को लेकर बैंक यूनियन अब आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकों के अंदर 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था को लागू करने और लाभ आधारित प्रोत्साहित योजना को वापस लेने जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। जनजातीय हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ें, राज्यपाल, ये कहना है हिंदुस्तान अखबार का। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि राज्य आज समय की आवश्यकता है कि जनजातीय हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए। जनजातीय समाज देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक के साथ साथ संतुलित जीवन, सामुदायिक सहयोग और परंपरा के संरक्षण की समृद्धि संस्कृति की इसकी पहचान रही है। ऐसे में पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पाद महज वस्तुएं नहीं बल्कि इनके पीछे पीढ़ियों से चले आ रहे कौशल अनुभव की कहानी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच पर पॉक्सो में मुकदमा। मुंबई के विले पार्ले में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकुड़ में बांग्लादेशी वोटर की आशंका, रिपोर्ट तलब। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। आशंका जताई जा रही है कि पाकुड़ में बांग्लादेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। इस आशंका के तहत चुनाव आयोग ने जांच का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ और साहिबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी को पत्र लिखकर 5 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। सोना 5 महीने में उच्चतम स्तर पर, यह कहना है हिंदुस्तान अखबार का। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 5 महीने से अधिक के उच्चतम 164,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। इस जानकारी के बाद एक बार फिर से हम गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं।

दोस्तों, इन दिनों राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसके लिए हम सभी काफी जागरूक भी हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल 25 अगस्त से 28 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और मृत्यु के बाद भी आंखें दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना है। जनमानस में नेत्रदान के प्रति फैली गलतफहमियों और झिझक को दूर करना भी इसका उद्देश्य है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए

पीड़ित दो अलग अलग व्यक्तियों को नई दृष्टि मिल सकती है या मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन को रोशन करने का सबसे बड़ा और परोपकारी कार्य है। मृत्यु के 6 घंटे के भीतर आंखें निकालनी होती है, इसके लिए इसके महत्व को समझना और समय पर कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के दिन हम ये संकल्प लें कि नेत्रदान जो है महादान है और हम इस उद्देश्य की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम सभी जो है सो मरने के बाद अपने नेत्र को एक ऐसे व्यक्ति को दें ताकि वो व्यक्ति इस दुनिया को देख सके जब हम नहीं रहे, या उनके माध्यम से हम अपनी आंखों को के माध्यम से हम दुनिया को देख सकते दूसरे के शरीर में जाकर के भी। अब दोस्तों, इस जानकारी के बाद एक गीत का आनंद लेते हैं हम सभी मिलकर।

दोस्तों, इन दिनों बारिश बहुत जमकर हो रही है और हम सभी जहाँ एक तरफ बारिश से परेशान हैं तो कहीं सूखा से भी लोग परेशान हैं। लेकिन इस पानी की मतलब इसको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने शायद कभी ध्यान नहीं दिया। बारिश के पानी को बचाने के लिए यानी वर्षा जल संचय के लिए घरों और छतों और खुले स्थानों पर स्टोरेज टैंक और रिचार्ज पिट बनाकर पानी को सहेजा जा सकता है। रूफटॉप हार्वेस्टिंग के माध्यम से भी पानी बचाया जा सकता है, जिसमें छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए नीचे नए बने नए टैंक या फिल्टर यूनिट तक पहुंचाएं और साथ ही एक रिचार्ज पिट भी बनाएं। जमीन में सोखता गड्ढा या बोरवेल रिचार्ज शॉफ्ट बनाकर अतिरिक्त पानी को सीधे भूजल स्तर में भेजें। अपने आसपास के पुराने कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई करें और उनकी पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाएं। साथ ही जल स्रोतों और खुले क्षेत्रों के पास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि मिट्टी पानी को रोक सके और भूजल बढ़े। इन छोटी छोटी आदतों को हम अपने जीवन में शुमार करके पानी को बचा सकते हैं ताकि आने वाले कल में पानी की बचत हो और पानी की किल्लत ना हो।

दोस्तों आज है 25 अगस्त और आज के दिन भारत और विश्व के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आज के दिन दोस्तों 1609 में वैज्ञानिक गैलीली ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी दूरबीन यानी टेलीस्कोप का प्रदर्शन किया। और आज के दिन 1825 में उरुग्वे ने ब्राजील से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज के दिन 1835 में न्यूयॉर्क के अखबार द सन ने चांद पर जीवन होने की झूठी खबर छापी, जिसे इतिहास में ग्रेट मून हॉक्स कहा गया। 1919 में लंदन से पेरिस के बीच दुनिया की पहली नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा शुरू हुई। और आज के दिन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस को नाजी कब्जे से आजाद कराया। 1988 में भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में फिर से चालू किया गया आज के दिन। और आज के दिन 2011 में श्रीलंका की सरकार ने देश में 30 साल से लगा हुआ आपातकाल को समाप्त किया था। आज के दिन 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भारत के शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तुर ने रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों अब हम आज बातें करते हैं कि आज कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ। आज के दिन 1916 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ। आज के दिन लुइस स्लेरी का जन्म, जो 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। और आज के दिन विजयकांत जी का जन्म, जो प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और राजनेता थे। और आज के दिन 1962 में जन्म हुआ राजीव कपूर का, जो मशहूर फिल्म अभिनेता और राज कपूर के पुत्र हुए। आज के दिन 1994 में जन्म हुआ विनेश फोगाट का, जो भारतीय प्रसिद्ध पहला महिला पहलवान हुई। और अब हम बता दें दोस्तों कि आज के दिन कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ। आज के दिन 1819 में जेम्स वाट जी का निधन हुआ, जो स्कॉटिश आविष्कारक थे जिन्होंने स्टीम इंजन में सुधार किया। और आज के दिन 1867 में निधन हुआ माइकल फैराडे का, जो महान अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। आज के दिन 1972 में निधन हुआ हरिभाव उपाध्याय का, जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। आज के दिन 2008 में निधन हुआ अहमद फराज का, जो प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। और आज के दिन नील आर्मस्ट्रांग जी का निधन हुआ था, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बने।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम के समापन का समय हो चला है, तो आज के इस विचार को जान लें। आज का एक छोटा सा कदम आपके लिए कल को बेहतर बनाता है। यदि किसी व्यक्ति में अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस और उनमें सुधार करने का इरादा हो, तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। अच्छे समय में कभी भी घमंड न करें और बुरे समय में कभी भी हार न मानें। इसी स्वीकार के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र कुमार मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: Nine!

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 10:59 और 33 सेकेंड्स में हैं। अभी से लेकर दोपहर के 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को, जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। इसके लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अल्ताफ राजा के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है जहीर आलम ने, संगीत है मोहम्मद शफी नियाजी का और एल्बम का नाम है तुम तो ठहरे परदेसी।

अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे

एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत

0: खूबसूरत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। समीर ने इसे लिखा है, ललित का संगीत है और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अदनान सामी के संगीत निर्देशन और उन्हीं की आवाज में सुनिए तेरा चेहरा इस एल्बम का गीत, जिसे लिखा है समीर ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और श्रोताओं, आज दिन में 4 बजे सुनना ना भूलें कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। आज आप इसमें सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग दो, तो जरूर सुनिए ये कार्यक्रम। और चलिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं अल्ताफ राजा की आवाज में, दिल के टुकड़े हुए हजार ये एल्बम का नाम है। अरुण भैरव ने इसे लिखा है, अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं सईद कादरी की लिखा ये गीत। गोल्डी ने इसे संगीतबद्ध किया है। एल्बम का नाम तू ही मेरे रब की तरह है।

आइए अब आपको सुनाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत, गीत संगीत ललित सेन का, एल्बम का नाम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी तो नजर मिलाओ, इस एल्बम का गीत अब सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में। रियाज और रहमान सागर ने इसे लिखा है और संगीत है अदनान सामी का।

अदनान सामी के गाए इस गीत के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा।

0: होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चांद का टुकड़ा इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। महेश और किशोर ने इसे संगीत से सजाया है।

0: श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके रचे और उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें संगीत के सुरों में आज हम याद करेंगे। कभी गीतकार बनकर, कभी भावनाओं को शब्द दिए, तो कभी निर्देशक बनकर उन भावनाओं को पर्दे पर साकार किया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही सावन कुमार टाक के कुछ गीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम
2: की। संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

साथियों, आप विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज दिन में 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। और इस समय कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। सावन कुमार टाक ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: रही?
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: महेश और किशोर का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए। इसे रचा है सावन कुमार ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम सनम बेवफा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं येसुदास और अनुराधा पौड़वाल के आवाजों में साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत। इंदिवर की रचना, उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: बेवफा से वफा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में। तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: यादों के महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत। उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम अब क्या होगा।

इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। जी हाँ साथियों, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम एक पहेली लेकर आते हैं इबारत के रूप में। आपको बुझानी होती है पहेलियां और बताने होते हैं वो शब्द जिनसे आज गीत बजने वाले हैं। तो चलिए जान लें एक बार कि कौन सी है वो पहेली और फिर आप बताएंगे वो शब्द। ध्यान से सुनिएगा। बात एक रात की थी, आसमान में चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति अपने साजन का इंतजार कर रही थी। हवा चली तो दिलबर की याद आई, याद आई तो नैना भर आए। तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। दिल ने कहा, वो आ गया। पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि तभी सामने से कोई आया। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इस पहेली को लेकर आप सभी ने कई सारी बातें लिखी हैं और उन कमेंट्स को भी आगे हम पढ़ेंगे, मगर एक बात हम आपको आज की इबारत को लेकर बता देते हैं। तो वो बात ये है कि अक्सर हम जब पहेली बताते हैं, कोई पहेली सुनाते हैं या इबारत पढ़ते हैं, तो उसके जो शब्द होते हैं उनसे कोई भी गीत हो सकता है, मगर आज के जो गीत हैं उनसे कहानी बननी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए ना आज के कार्यक्रम में आपको क्या करना है। तो यूं तो अब उदाहरण के लिए आपको मैं एक बताती हूं, जैसे ज्योति शब्द से हो सकता है आप समझे ज्योतिष कलश छल के ये गीत बजेगा, और फूल से शायद आप समझें कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गीत बजेगा। मगर नहीं, आज जो गीत बजेंगे वो कहानी के रूप में होंगे, यानी कि वो गीत न सिर्फ शब्दों से जुड़ते हैं बल्कि पूरी पहेली की कहानी से जुड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। पहचानिए वो शब्द।

इस गीत में जो शब्द था, जी हाँ, वो यही शब्द था चांद। और शायद आप समझ गए होंगे कि चांद शब्द से और भी गीत हो सकते थे, मगर चूंकि इनमें नींद ना आने की बात हो रही है, तो ये हमारी कहानी से जुड़ता है, जो कहानी हमने पहेली में बताई है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दीपक अकेला हो तो बस एक दीपक है, ज्योति के साथ हो तो उजाला बन जाता है। शायद इसी को साथ की खूबसूरती कहते हैं, जहां एक की मौजूदगी दूसरे को अर्थ दे। दीपक और ज्योति हमें यही सिखाते हैं कि किसी की कीमत हमेशा अकेले नहीं आंकी जाती, कभी कभी किसी के होने से ही हमारी रोशनी पूरी होती है। एक छोटी मगर प्यारी सी बात, दीपक की सुंदरता ज्योति से है और ज्योति की पहचान दीपक से। दोनों साथ हों तो अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई देती है। एक साथ ही लिखते हैं, आज की इस लघु कथा का सबसे भावुक क्षण वो है जहां उम्मीद भ्रम में बदलती है। बारिश की बूंदों को साजन के कदमों की आहट समझ बैठना विरह की उस गहरी अवस्था को दर्शाता है जहां मन हर आवाज में अपने प्यार को ढूंढने लगता है। उस भ्रम के टूटने पर उपजी मायूसी दिल को छू जाती है। जिस तरह दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं और ज्योति के बिना दीपक अधूरा है, उसी तरह दोनों का मिलन प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं शराबी फिल्म से, किशोर कुमार की और

0: एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा अनजान और प्रकाश मेहरा ने।
1: रात प्यार की, रात प्यार की।
0: एक साथी ने लिखा है, आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है और हवा के झोंकों से उसके नैन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से भ्रमित होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है। और ऐसे में हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो वियोग के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा
4: कर रही थी। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर और

0: निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड में सक्रिय मॉनसून का असर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट
1: आईएमडी रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 27 से 28 और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। नवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे। डिजिटल लेन देन में 13,000 गुणा की हुई वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर भारतीय के लिए गर्व का पल। झारखंड में मतदाता सूची सत्यापन और सुधार के लिए आज से होम टू रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू। एक परिवार के मतदाताओं के नाम एक बूथ में होंगे शामिल। राष्ट्रीय 41वें नेत्रदान पखवाड़े की रिम्स रांची में हुई शुरुआत। नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने और इच्छुक लोगों से संकल्प पत्र भरवाने पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना। और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के लिए 13 सितंबर को होगा मतदान। चुनाव पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: तो देखिए कहानी बन रही है या नहीं। जैसे जब पहला गीत था लो आ गई उनकी याद, तो हमारी जो नायिका है यानी कि ज्योति, वो अपने दिल ही दिल में कह रही है कि उनकी याद तो आ गई पर वो नहीं आए, तो इसमें याद शब्द था। और इसी तरह ये जो गीत था नैना, इसमें शब्द नैन इन्हें लिया गया था कि अब पिया की याद में उस बिरह में वो रो रही है, आंसू बहा रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब हमारी सगाई हुई थी कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी अपनी बड़ी बहन के पास अजमेर से जयपुर गई हुई है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी जॉब के कारण मीटिंग भी जयपुर में थी, पर संस्कारों के कारण मिलने तो नहीं जा सकता था और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, दिना, दिना,
0: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत। आप बताइएगा कहानी में कौन सा शब्द जुड़ता है।

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतजार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ, दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो। मगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए तो जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी, वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं। और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है, परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है। चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में। फिल्म का नाम कभी कभी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।

चेहरा ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा आगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टिबाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा

हिस्सा होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में

0: महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: लाइक टू कंग्रेचुलेट फेडेक्स एंड दिल्ली जीएमआर एयरपोर्ट।
5: मैं फेडेक्स और दिल्ली जीएमआर एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
6: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमार डुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत

0: डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना चश्मे बहादुर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
0: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। खान एवं खनिज विकास विनियमन MMDR कानून में संशोधन को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखा है। पत्र में वित्त मंत्री ने दावा किया है कि संशोधन से राज्य को 14,000 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा और कोयला कंपनियों से बकाया राशि पर असर पड़ेगा। उन्होंने श्री मरांडी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की है। MMDR संशोधन विधेयक को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है।
1: कोयला भी आपके यहाँ टैक्स लगने के कारण महंगा हो जाता है, आयरन और भी महंगा हो जाता है, तो सरकार को रॉयल्टी के पैसे में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी अगर इसी तरीके का राज्य सरकार को सेस लगाने का प्रावधान रहा तो। वित्त मंत्री जी ने कन्वीनियंटली इन तथ्यों को अपने पत्र में छिपा दिया है।
0: इधर कांग्रेस ने इस बिल के विरोध में 27 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। बोकारो पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इस बिल को झारखंड के हितों पर आघात बताया है।
2: हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा अधिकार हम लूटने नहीं देंगे, और हम समझते हैं कि जिस तरह से पूरे राज्य का सेंटिमेंट है, निश्चित रूप से हम राज्य के लोगों को अधिकार दिलाने में सफल होंगे। इसमें पूरे प्रदेश के लोगों का सहयोग मिल रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर आघात है। उन्होंने जनता से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी या आशंका होने पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से बेटियों के सुरक्षित भविष्य की रक्षा करने का संकल्प लेने को कहा।

0: है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर सहमति दी जाने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग दो दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ धनबाद के बरवा अड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी रवि कुमार ने विधायक पर व्हाट्सएप कॉल के दौरान कथित तौर पर गाली गलौज, वर्दी उतरवाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में विधायक सहित 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सोशल मीडिया पर इस बातचीत का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जामताड़ा में आगामी 27 अगस्त को खेलो इंडिया कार्यक्रम का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसका आयोजन जामताड़ा महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय फतेहपुर में किया जाएगा। माई भारत खेलो इंडिया की उपनिदेशक उत्तरा विश्वास ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है।
2: 29th of August, our National Sports Day के कनेक्शन में 27th of August, हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी देश का जो स्पोर्ट्स पर्सन है, युवा है, उनको एड्रेस कर रहे हैं। देश के 1600 लोकेशन में ये आयोजन किया जा रहा है एंड जामताड़ा में दो जगह पे आयोजन हो जा रहा है।
0: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं, कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सुनाली।
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल।
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे हाँ। ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना, उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता है रुको रुको फेंको मत, फेंकना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
2: उन्हें तो हम खास तौर पर संभाल के रखते हैं।
1: हाँ, अरे नहीं नहीं, नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमें कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
2: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
1: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
2: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो की सह संस्थापक है एमपीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं।
1: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
2: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना,
1: मजेदार।
2: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो जाते हैं।
1: कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सपने खाते तो भी एक किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी लाने के लिए।
2: बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सहेज के रख भी नहीं सकते,
1: फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
2: बिल्कुल। तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सकें।
1: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों का पढ़ के।
2: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की, तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली वो है घाव पर नमक छिड़कना।
1: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
2: या
1: क्या?
2: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी, तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
1: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है छोटी? हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। और तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी, समझ लीजिए सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं,
1: प्रेरणादायी।
0: बिल्कुल, जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की

0: जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल, उनके सामने कई चुनौतियां थीं जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीक को स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल, अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एमपीएन ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि तकनीक पर्यावरण रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है.
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना.
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ.
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना.
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते मैं हंसकर लोटपोट हो गई. एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीददारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देखकर परख कर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है. जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा. टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना. साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं. वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं थे ऐसा कहकर फ्री में नहीं लाता.
1: बहुत अच्छी बात. सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ. तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज. वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती है. सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं. अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है.
0: और एक साथी कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई लाकर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है. मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है. मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है.
1: बिल्कुल सही बात कही. और एक और मैं श्रुतांशु लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरे सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी

0: निकलती हैं, उसी उसी समय पुरुषों पर बड़ी बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ और ही बनाना पड़ा है। यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी, लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा। हल्की फुल्की बातों में पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने उसी चीज को लिखा है वापस।
1: एक तो, साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही
0: नहीं आप पढ़िए।
1: एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है, और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी, और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं, मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं। यानी देखिए दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही हमारी एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोकझोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
1: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नाप तुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूं, ताकि सब्जी और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूं।
0: अच्छा। और साथ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है, ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता, लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं, वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
1: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं, और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए, तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
0: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: तो आप किनका किनकी बात लेने जा रही हो
1: हाँ,
0: सोनाली?
1: आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि ये पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज ना मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना?
1: बिल्कुल,
0: डांट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते हैं कि पुरुष

0: और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा हाँ बिल्कुल, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है, आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है, कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देख कर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी
1: है, सुनना है।

0: हरानी साहिबा बताइए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है हाँ। कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है, तो रानी है ना वो।
0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते होते होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाएं, जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, घर या पुराने सामानों का गोदाम विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकलिंग करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोताएं जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। यह विषय हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
1: क्या बात है। एक साथी कहते हैं, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने की नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है उन्होंने।
0: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पूरा
1: कॉकरोच हो जाएंगे,
0: बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
1: जी, एक साथ ही लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
0: बिल्कुल। और हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। जाने कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
0: वाह, इन्होंने तो गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
0: एक गीत सुनना है।
1: सुनते हैं गीत।

घटित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंगा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है उनका कमेंट ले लेते हैं जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है। तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है। ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं,
1: ये ना बहुत उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है ना, तो रखना भी चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें है ना उसका ही महत्व बढ़ गया है कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन

0: हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा।
1: बिल्कुल, घर भी साफ रहता है थोड़ा, जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है। आप खुद देखिए, अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
0: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भाई सामान बढ़ा लिया, फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और हम इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते हैं,
1: लगे रह जाते हैं।
0: तो हमें इन सब बातों को
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: बिल्कुल,
0: देना है।
1: बिल्कुल, और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
0: हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब हम खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए तो उसे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है।
1: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया है,
0: समझाया,
1: वर्णन किया है। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे बताया तो वही बताने हुई बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने थे, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों करने से कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
0: बिल्कुल सही,
1: दुखों को नहीं। दुखों को ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
0: हाँ, तो आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारी

0: श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो इसके बाद अगर मकान मालिक किराया लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी ही बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है, कहते हैं कि कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता है।
0: बिल्कुल, अगर कोई दुखी है तो उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और
1: बल्कि मरहम का काम करें अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के, और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप
0: और विविध भारती सुनते रहिए, और हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। यूपीआई की अभूतपूर्व क्षमता और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। अब यह प्रणाली 11 देशों में संचालित हो रही है। यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर हजारीबाग में उत्साह है। जिले में कुल लेन देन में छोटी खरीदारी की हिस्सेदारी 63% और बड़े ट्रांसफर की वैल्यू 71% पहुंच गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय लोगों ने व्यापार को सुगम व पारदर्शी बनाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जेपीएससी पुनर्गठन प्रस्ताव, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने समेत कई मुद्दों पर सहमति दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एमएमडीआर संशोधित बिल पर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने केंद्र पर आर्थिक हमले और आदिवासी अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कांग्रेस 27 अगस्त को जिला स्तरीय धरना और 7 सितंबर को राजभवन का घेराव करेगी। खूंटी में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने गुम हुए 53 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के जरिए इन फोनों को खोजा गया। खोया मोबाइल वापस पाकर आम लोगों ने खूंटी पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्य में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में पलामू के उटारी रोड में सर्वाधिक 185 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक राज्य में गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में राज्य में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
3: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
2: यस,
3: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
2: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
3: जी,
2: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
3: बिल्कुल, अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
2: जी।
3: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
2: हाँ, ऐसे ही हमारा वही खेल वाली उठली, हम भी खेलते थे वो सारी चीजें। गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और
3: मिट्टी में
2: वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
3: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय तो
2: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
3: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
2: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
3: सूजा था।
2: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा

0: वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया, तो वो ना सीधे वो सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना, मतलब कि झूठ नहीं बोलना है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इस तरह का।
1: नैतिकता बहुत
0: हाँ
1: सिखाई
0: बहुत
1: जाती
0: सिखाई
1: थी
0: जाती
1: बचपन
0: थी।
1: में
0: जी
1: जी
0: मेरे
2: दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
0: माँ
1: कौन
0: बाप
1: सी गांव
0: दोनों,
1: की बात है ये?
0: ये जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहां
1: जी,
0: गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
0: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया, वो सब कुछ उनको।
1: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
0: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं, हमने सुना है गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। कमाल
0: जी, आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: नहीं, देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी, जी।
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: राकेश देशमुख है, आपकी कैसी
1: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, तो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी ऐसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया, बस हमको खड़े हो जाओ यहाँ पे, ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया बस खत्म।
0: अच्छा,
1: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वेराइटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल
0: जी। अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने एक खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक छप्पन, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
0: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं। आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप। वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं। और इतनी बार पुलिस की,
1: ये आपने सारी पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी।
1: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया। कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बुद्ध फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब। तो उन्होंने किया, फिर बाद में हमने अपहरण भी किया। तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
0: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए। बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
1: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं। अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमी तमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ। तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन। मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहाँ बुलाया उन्होंने, एक 5-स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे, तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन।
0: क्या बात है,
1: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
0: क्या बात है, अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
1: यार है तुमको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी,
3: क्या हो

0: राधा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका? बहुत
0: इन्होंने मेरा
1: सारे
0: बहुत बार दिल तोड़ा
1: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक हैं सुनने के लिए।
0: हाँ, 6 6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
0: समय
2: बोल
0: तक।
2: रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है, तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
0: बहुत
2: हजार
0: ज्यादा पुराना
2: हुए
0: गाना है
2: कोई यहाँ
0: वो
2: गिरा कोई। अरे लेकिन
0: यहाँ
2: गाना कमाल
0: गिरा।
2: है ये।
1: नहीं,
0: हाँ,
1: अच्छा चलिए ये बताइए हमें, यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
0: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
1: वो
0: पैर तक
1: तो
0: पसंद
1: पसंद तो
0: करते
1: शादी के
0: हो।
1: पहले होता, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
0: नहीं,
1: पत्नी
0: वो
1: में।
0: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती
2: अब हम क्या
0: उनके
2: उससे ऊपर उठ चुके हैं।
1: बारे
2: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए,
1: में
2: फिर दोबारा से प्यार हो गया। तो
1: ऐसा
2: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: अच्छा एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अब भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा,
2: कभी
1: बहुत
2: ऐसा
1: बढ़िया।
2: हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों
0: रात
2: को।
0: गई बात गई।
2: हाँ गई बात गई,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी उम्र बची है इसमें भी, अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के चलने
2: बिल्कुल
1: का।
2: बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
0: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि

0: ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और कोई बात, घर घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर
0: नहीं
1: रखने
0: नहीं
1: की।
0: ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज
1: अच्छा
0: घर में, उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ
1: अच्छा
0: चीजों
1: क्या
0: को।
1: बात है, बहुत
0: मैंने
1: बढ़िया।
0: इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
1: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसके कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़े हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार।
1: सच बोल रहे हैं प्रतिभा जी? चलिए मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
0: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
1: नहीं नहीं आपको अपने से बताना है।
2: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
0: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं, इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगती थी ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
1: ओहो क्या बात,
2: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ। और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी। और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
1: क्या बात।
2: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं है, रेडियो है। नहीं रेडियो में कैसे दिखेंगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ
1: श्रोता सुन रहे
2: हैं। तो वो वाली ड्रेस जो उसके मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी की, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
0: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
1: आप गांठ रख लेती है मन में।
0: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी?
2: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
1: देखिए यहाँ
2: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
2: हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं।
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना?
2: अब तक 56 मेरी फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर श्याम बेनेगल की।
1: जी जी
2: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
1: जी,
2: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
0: उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया।
2: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था, नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको। तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो, उसका पार्ट 2 बनाना है अभी बाकी है, अभी पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है, 5 साल लगे बनाने में।
1: क्या बात है,
2: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ।
1: जी आपने डायरेक्ट भी किया है
2: जी डायरेक्ट विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्टूडियो घड़ी में शाम के 4:30 हुआ चाहते हैं।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का आज का अंक।
1: एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है और वो अपने बच्चों
2: वो
1: को सब फेमस कुछ दे
2: प्ले
1: देता है
2: मराठी का नट सम्राट।
1: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी दी जाए।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
2: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
1: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
2: तो आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। जो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
2: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
1: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
1: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
2: जी विमलेश जी बिल्कुल। दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
1: बिल्कुल,
2: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
1: जी।
2: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
1: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
2: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
1: जी
2: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
1: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
2: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
1: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
2: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
1: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
2: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे
1: जी।
2: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
1: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
2: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
1: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
2: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी।
2: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
2: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
2: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
0: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी
3: को क्या हो गया, हमारे घर के सारे सामान बह गया,
4: लगता है हो गई है
5: क्या? अरे हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
4: फसल बह गई।
6: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
7: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
8: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
7: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
6: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
7: अरे
9: मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
6: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
10: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
6: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
7: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
11: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
6: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
8: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
7: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
12: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
6: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
3: हमारे पशु पक्षी हमें लगा, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
4: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
7: हमारे खेतों में पानी भर गया।
0: सारे फसल बर्बाद,
4: सारी फसल बह गई।
3: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
11: इन्हें जल्दी से
3: ऊपर ले जाना होगा।
11: चलो जल्दी ऊपर,
3: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी, चलो
11: चलो चलो,
3: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
11: अरे ध्यान से संभल कर।
13: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
14: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी तुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
2: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
1: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा है जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो है पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी टेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती।

0: अभ्यास कैसे चल रहा है भाई?
1: मैम अच्छा चल रहा है।
0: गुड।
1: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
0: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
1: जी मैम।
0: तो तुम्हें एक काम करना है।
1: जी।
0: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
1: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
0: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
1: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
0: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू मैम।
2: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
3: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
2: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
3: वर्ष था 1977 का जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
2: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
1: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
1: लेकिन सर मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
1: आप? धन्यवाद सर। लेकिन
4: अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
1: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
1: थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
2: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
5: आज तो बड़ा मजा आ जाएगा दौड़ देखने में।
6: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है। हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। गई।

0: उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
1: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
1: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
1: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
0: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
1: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
0: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का आज का अंक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने रांची केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बधाई दी है। अन्नपूर्णा देवी ने इसे वैश्विक मंच पर भारत को स्थापित करने वाली डिजिटल क्रांति की मिसाल बताया। वहीं संजय सेठ ने कहा कि बिना किसी मदद के आम लोगों द्वारा डिजिटल पेमेंट करना तकनीक की असली ताकत और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा धांधली मामले में छात्रों पर दर्ज मुकदमों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा नेताओं ने रांची सदर सीओ से मुलाकात कर प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। संशोधित एमएमडीआर बिल के खिलाफ खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा ने कांग्रेस के चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस 27 अगस्त को जिला स्तरीय धरना, 7 सितंबर को राजभवन घेराव और 9 से 16 सितंबर तक प्रखंडों में प्रदर्शन करेगी। पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन सफाया के तहत इनाम की घोषणा की है। एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ऑटोमेटिक हथियार की सूचना पर 20,000, पिस्टल पर 15,000 और देसी कट्टे पर 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रहेगी। पूर्वी सिंहभूम में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि गुड़ाबांदा पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 17 चोरी की मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। सरायकेला खरसावां में अवैध बालू खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उपायुक्त के निर्देश पर खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति के नेतृत्व में चौका, चांडिल और कंदरबेड़ा में छापेमारी की गई। इस अवैध कारोबार के खिलाफ चांडिल थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

श्रोताओं, एक दूजे के लिए फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें थी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरो से। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज है। इस गीत को सुनने से पहले कुछ जरूरी संदेश आपके लिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात।

संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोताओं, हीरो फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज थी। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, प्रेम कहानी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और उनके साथियों की आवाज में।

तो श्रोताओं, ये था इवनिंग मेलोडी का सफर, जिसे आपने तय किया अपने दोस्त सुनील के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले इन सभी किसान भाई बहन के मीनाक्षी बहन के तने से जोहार राम प्रणाम राम राम और सभी किसान भाई बहन के आपन कार्यक्रम में स्वागत हन। और देखा हमें जब भी आवो ही है ढेरे मनी जानकारी लेके आवो ही है और बड़ी मनी विषय पर बतिया भी ही है। हम इनकर किसान भाई सभी देखा कि बड़ी मेहनत से और खूब मन लगा के खेती बाड़ी के काम धंधा करो हथिन, मगर जितना देखा कि मुनाफा होवे के चाही वो ना होवे है। एकर खातिर जरूरी है कि हम इन अपन खेत के माटी के समय समय पर जांच करावेत रहिए, ताकि ओकर में हम इनके ई पता चल सको है कि हम इनकर खेत के माटी में का पोषक के तत्व के कमी हो है, जेकर से फसल में जितना उत्पादन होवे के चाही उतना न हो रहा है। एहे से हम इनके चाही के माटी के जांच हमेशा करावे के। एकर लिए जरूरी है कि हर फसल चक्र से पहले देखा माटी के जांच करवल जाए, ताकि ओकर जे पीएच मान हुआ है माटी के वो पता चल सके, ओकर साथे साथे ओकर में का मौजूद पोषक तत्व है ओकर सही बेस तरी से सही सही जानकारी हम इनके मिल सके। और साथ में देखा कि खेत में जैविक खाद के जैसे कि गोबर के खाद हो गलो, कंपोस्ट के खाद हो गलो, जेकरा बर्मी कंपोस्ट भी कहल जा है और साथे साथे केचुआ खाद भी कहल जा है कि ज्यादा उपयोग करल जाए। एकर से माटी के जे देखा कि कार्बनिक उपयोग करल जा सको है, एकर से माटी में जे कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव के मात्रा बढ़ो है कहल जा है कि बढ़े से काफ़ी बेस रहो है माटी खातिर। और देखा कि हर जे सीजन हुआ है एकर में एक प्रकार के फसल के उगावे के जगह पे फसल के बदल बदल के लगावे के चाही, ताकि खास करके देखा कि दलहनी फसल लगावे से हम जे माटी में नाइट्रोजन के मात्रा हो वो स्थिर हुआ है। और देखा कि दलहनी फसल के जड़ में राइजोबियम भी पावल जा है जे हम इनके माटी खातिर बड़ी जरूरी हुए है। एकर अलावे देखा कि सनई होलो जेकरा ठेचा भी कहल जा है, जैसन फसल के उगा के खेत में जोत दिए के चाही, ताकि एकर से माटी में के भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और पोषक तत्व मिल सके। और देखा कि फसल कर कटाई के बादे बचल डंठल जो हुए है और ओकर पतैयन के जलावे के न चाही, एकरा छोट छोट करके माटी में ही मिला दिए के चाही। या देखा कि खेत में मल्चिंग रूप से हम इन ओकरा इस्तेमाल कर सको ही है, जैसे कि हम इन कहीं किनारे गड्ढा बना के ओकरा में डाल दिए, ताकि वो देखा कि मल्चिंग हो करके या ओकरा में गल के फिर ओकरा हम इन अपन माटी में पलट दिए, तो ओकरा मिलावे से भी हम इनके माटी के कई प्रकार के पोषक तत्व मिल सको है। एकर अलावे देखा कि यूरिया और डीएपी के अंधाधुन इस्तेमाल बंद कर दिए के चाही। या देखा कि माटी के जांच के आधार पे इन्हीं एकरा इस्तेमाल करें जितना मात्रा में बतावल

जाए उतने ही इस्तेमाल करे के चाही। एकर अलावे देखा कि खेत के मेड़बंदी भी देखा बेस तरीके के से करे के चाही ताकि ओकर पानी के तेज बहाव के रोकल जा सको सके है और ओकर उपजाऊ मिट्टी से हमें ओकरा बहे से बचा सको है। और अब आगे भी हमें बातचीत में बनल रहबे। पहले हम इनकर श्रोता सबन देखा कि गीत सुने ले भी उम्मीद कर ले होते कि हम इनके कार्यक्रम के शुरुआत हो गए हैं तो गीत बेस बेस गीत सुने ले मिलते तो हम सुनाव ही हम इनके किसान भाई सबन खातिर ये गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो देखा, अभी हम इन सुने थलिए गीत, और हमारा उम्मीद है कि ये लोग गीत सभी गोटे के जरूर बेस लगले होते। और अब जानकारी भरल बातचीत में बढ़ल जाए। हम इनकर सरकार समय समय पर कई गो योजना चलावित रहो है हम इनके किसान भाई सब इन खातिर, ताकि उनकर काफ़ी योजना सबके लाभ भी मिलते और मिल भी रहल है। यह में एगो ऐसा योजना है कि देखा कि परंपरागत कृषि विकास योजना, जेकर उद्देश्य देखा कि हम इनकर देश में रासायनिक उर्वरक पर जो निर्भरता है ओकरा कम करके जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के बढ़ावा दिए खातिर है। और एकरा लिए जरूरी है कि हम इन अपन माटी के स्वास्थ्य के सुधार करल जाए, ताकि आर ई कैसे होते भाई। तो एकर खातिर देखा कि माटी के उर्वरता और गुणवत्ता के वापस लाए के ही हम इन अपन माटी के स्वास्थ्य के ठीक कर सको ही है। एकर अलावे किसान भाई सब के कीटनाशक और रासायनिक खाद के इस्तेमाल कम से कम और या फिर देखा कि रोक दिए के चाहिए। एकर अलावे 20 हेक्टेयर भूमि कर समूह में देखा कि जैविक खेती के बढ़ावा दिए के होते हैं, और साथ में देखा कि जैविक खाद के जैविक उत्पादक के देखा कि पैकेजिंग करे होते हैं, ब्रांडिंग करे होते हैं, और साथ में ओकर स्थानीय बाजार से जोड़ के किसान के आय के बढ़ावे के होते हैं। और योजना के महत्व भी यह है कि जैविक खाद और स्थानीय संसाधन के उपयोग करके हम इन खेती के लागत के कम कर सको ही है, जेकर से उपभोक्ता सभन के रासायन मुक्त और पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिल सकते मिलते। और देखा कि माटी, पानी और वायु प्रदूषण और हम इनके माटी भी

0: के भी प्रदूषित होवे से बचा सको ही है और हम इन अपन वातावरण के सुरक्षित रख सको ही है। गोबर खाद जे होए है और फसल चक्र अपनावे से माटी के उपजाऊ क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ो है। एकर अलावे केचुआ होगलो, मित्र कीट होगलो, ओकरा एकर में सुरक्षित रहो है, जेकर से प्राकृतिक संतुलन बनल रहो है। तो एकर में निष्कर्ष यही निकलो है कि प्राकृतिक खेती करे से खेत में लगवे वाला लागत कम हुआ है, माटी के उपजाऊ क्षमता लंबा समय तक सुरक्षित रहो है, बनल रहो है और पर्यावरण और मानव कर स्वास्थ्य के भी नुकसान पहुंचावे वाला हानिकारक रसायन न फैलो है और एकर से जब नुकसान न होते हम इनकर शरीर के और हम इनके स्वास्थ्य बढ़िया रहते हैं, हम इनके फसल भी जैविक रहते हैं, ओकर से हम इनके आपन स्वास्थ्य भी बेस रहते हैं, माटी के स्वास्थ्य भी बेस रहते हैं, तो हम इनके काफ़ी मुनाफा भी मिलते हैं। और आगे भी हम इन बातचीत में बनल रहे, देखा कि आज हम इन पास एगो जानकारी आयल है, वो जानकारी है कि देखा कि कैसे वो किसान हथिन जे किसान हथिन मिथुन तिग्गा, वो कैसे ग्राफ्टिंग विधि तकनीक से देखा कि और मल्चिंग विधि से खेती करे थथिन बैगन के, तो सुनल जाए जानकारी।
1: श्रोताओ, आज हमारे बीच है एक जागरूक किसान, तो आइए उनसे मिलते हैं जो काफी अच्छी तरीके से खेती बाड़ी के कामों को कर रहे हैं। तो आपका नाम?
2: मिथुन तिग्गा।
1: मिथुन तिग्गा, कहाँ से के रहने वाले हैं?
2: कुड़ूड़ू पतरातू।
1: कुड़ूड़ू पतरातू के। अच्छा, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई?
2: मेरा मैट्रिक तक हुए है।
1: मैट्रिक हो तक हुए। तो आप ये जो मिथुन जी, वो खेती से जो आप जुड़े वो कब से जुड़े?
2: हम वही जब छोटा थे उस समय मेरा मम्मी पापा लोग भी खेती किसानी करते थे, उसी समय से हल्का फुल्का करते ही हम आए,
1: करते ही आए, तो उसी तरह से सीख भी गए। तो अभी आप अपने खेतों में लगाए क्या क्या? बैगन वगैरह लगाए हुए हैं, कहीं कद्दू लगाए हुए हैं, और क्या क्या लगाए हुए हैं?
2: अभी तो करेला है, कद्दू है, उसके बाद फिर बैगन है।
1: तो ये जो आप काम अभी देख रहे हैं खेतों में कि बैगन लगा हुआ है, तो इसकी तैयारी आपने कैसे की, क्या किया?
2: पहले इसका तैयारी हम पहले हल जोतवा करके, उसके बाद ट्रैक्टर से मेड़ बनवाए, उसके बाद फिर गोबर गिरवाए, उसके बाद पूरा लेबर से पूरा मेड़ में गोबर डलवाए।
1: उसके मतलब कितनी बार, मतलब कितना बार जोता?
2: शुरू रोटावेटर से चलवाए, उसके बाद फिर कांटा हल से जोतवाए तीन चार बार, उसके बाद फिर लास्ट में फिर रोटावेटर चलवाए, उसके बाद फिर मेड़ बनवाए।
1: मेड़, तो हम देख रहे हैं कि आपका जो मेड़ है वो काफी चौड़ा चौड़ा, ये ज्यादा चौड़ा नहीं है?
2: नहीं, ये मेड़ अभी और चौड़ा होता।
1: और चौड़ा होता,
2: हाँ, के लिए जगह कम रहने कारण हमको ऐसा ट्रैक्टर में ऐसा जुगाड़ नहीं था चौड़ा करने के लिए। अच्छा, इसीलिए मेड़ पतला हो गया, नहीं तो इसका चौड़ाई रहता है लाइन से लाइन का दूरी साढ़े छह फीट रहता है।
1: तो फिर इसके बाद मिट्टी पलट करके हल्का करके भुरभुरा करके आपने मेड़ बना लिया, उसके बाद
2: फिर ड्रिप वाला लिटिल पाइप बिछा करके फिर उसके बाद फिर मल्चिंग डिसवाए।
1: अच्छा, मल्चिंग से किए हैं?
2: मल्चिंग लगा हुआ है, मल्चिंग के बाद।
1: तो ये थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे ये मल्चिंग विधि कैसे करते हैं? तो ड्रिप बिछाते हैं, फिर
2: ड्रिप बिछा करके उसमें ड्रिप बिछता है, उसी से पानी जाता है जगह जगह पे, जहाँ जहाँ पेड़ है वही वही पानी छूटता है।
1: ये मुझे बताइए कि ड्रिप जैसे जहाँ आपको लगाना है पौधा उसी जगह पे उसका पाइप आता होगा, वो छेद होता होगा?
2: हाँ, वो दो दो मतलब वही दो फीट में ढाई फीट में उसका
1: छेद रहता है।
2: तो इससे क्या, मेरा प्लांट दूरी में लगाना है तो दो छेद हम छोड़ देंगे, दो छेद छोड़ करके तीसरा
1: छेद ओपन ही नहीं करेंगे?
2: नहीं, वहाँ वो छेद ओपन ही रहता है, बस केवल मल्चिंग वहाँ पर छेदा नहीं करेंगे।
1: अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर कैसे क्या क्या पौधा की नर्सरी आपने तैयार की कि कहीं बाहर से
2: मंगवाए थे? बाहर से।
1: बाहर से मंगवाए थे? कहाँ से मंगवाए?
2: छत्तीसगढ़ से मंगवाए थे।
1: छत्तीसगढ़ से पौधा मंगवाए? ऐसा क्यों भाई कि यहाँ पे आप अपने से बीजा नर्सरी तैयार ना करके या फिर आसपास के नर्सरी से ना मंगा करके बाहर से मंगा, ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ग्राफ्टिंग रहता है और इसमें मरने का शिकायत बहुत कम है।
1: ग्राफ्टिंग किया हुआ रहता है?
2: हाँ।
1: और मरने का
2: नीचे में जंगली बैगन का जड़ रहता है, ऊपर में 212

0: ड्रिप लगा हुआ है,
1: हाँ तो
0: जब
1: पानी
0: चलाए
1: पटा
0: तो
1: दिया,
0: पानी
1: पटेगा।
0: पट गया।
1: तो जो ड्रिप लगाए हुए हैं उसमें जैसे सल्फेट देना रहता है, तो फिर आप कैसे देते हैं?
0: उसका मंचूरियन लगा हुआ है,
1: अच्छा, मंचूरियन।
0: मंचूरियन लगा हुआ है, मतलब जो भी हमको खाद चलाना है तो बाल्टी में घोर करके हम उसमें पानी के साथ में चला देते
1: चला
0: हैं।
1: दे। अच्छा, तो उससे उसको खाद भी मिल जाता है और
0: हाँ, जो
1: पानी
0: भी,
1: भी पड़ जाता
0: हाँ
1: है।
0: पानी पड़ जाता है, उसके बाद पेड़ में जैसा जो भी नाइट्रोजन हमको देना है, जैसे हो गया सल्फर चलाना है, पोटाश चलाना है, ये सब हम सब ड्रिप पे चला लेते हैं। बाद में ऊपर से कोई खाद नहीं चलाना है।
1: तो ये जो आप बैगन लगाए हैं, तो अभी तो इसके तोड़ाई तो हुई नहीं होगी,
0: नहीं, अभी केवल अभी स्टार्टिंग में,
1: अभी शुरुआत हो रहा है।
0: शुरुआत में तोड़े थे 15-20 केजी,
1: हाँ,
0: अभी सब पेड़ में फल नहीं है, कहीं कहीं पे है।
1: मतलब एक तोड़न कर चुके हैं। अच्छा, तो इसमें क्या रोग लगने का भी रहता है क्या?
0: बस इसमें ज्यादा रोग लगने का, जड़ का समस्या नहीं रहता है, बस जो केवल पत्ता में फंगस उंगस लग जाता है, कीट से परेशान ज्यादा होता है,
1: तो
0: कीट ज्यादा लगता है इसमें, झिल्ली सब,
1: हाँ,
0: यही सब का थोड़ा
1: तो उसके
0: सा
1: लिए
0: समस्या है।
1: छिड़काव करते हैं।
0: उसके लिए छिड़काव
1: तो कीटनाशक क्या बाजार से लाते हैं, या वो भी जहाँ से मंगाते हैं वो बताता है कि इस तरह का
0: नहीं,
1: ये पे करना पड़े?
0: ये सब दवा सब बाजारे से लेते हैं, लोकल
1: बाजार से
0: दुकान से
1: लेते
0: ही
1: हैं,
0: लेते
1: तो
0: हैं।
1: दुकान में बताते हैं तो।
0: नहीं, वो सब हम लोग को पता ही है, जैसे घूमते फिरते पता चल जाता है कि ये कंपनी का अच्छा दवा है, इससे हिली कंट्रोल हो जाते हैं।
1: अच्छा, झिल्ली कंट्रोल हो जाए।
0: जितना है
1: अच्छा।
0: फल छेदक, हिली तना छेदक, उसे सब कंट्रोल हो जाते हैं।
1: अच्छा, तो उससे ये हो जाता है। तो आप जैसे कि ये किस तरह का बैगन का प्रजाति है ये मुझे बताएं थोड़ा सा।
0: ये भिनार का 212 है।
1: हाँ, तो ये कैसा फलता है, पतला
0: ये
1: क्या, क्योंकि बैगन की तो कई वराइटी और कई
0: ये
1: किस्में होती है ना, तो ये कौन सी किस्म है?
0: मतलब
1: ये
0: ग्राफ्टिंग
1: भंटा
0: वाला में
1: बैगन है या
0: नहीं,
1: लंबा वाला
0: लंबा
1: बैगन
0: में,
1: है?
0: ये लंबा में हल्का गोल आकार में है।
1: अच्छा, ये लंबा में थोड़ा हल्का गोल
0: गोल
1: आकार।
0: है, डुमकू सा होता है ये।
1: अच्छा, भंटा बैगन जिसको
0: नहीं
1: बोलते क्या, कि वो
0: नहीं
1: दूसरा,
0: उससे अलग है,
1: उससे अलग है।
0: भंटा नहीं है।
1: अच्छा, लेकिन है बड़ा साइज
0: हाँ,
1: में होता है। और
0: वही मतलब 300-350 एगो फल
1: अच्छा,
0: आ जाते
1: एक
0: हैं।
1: फल का साइज 300-350 ग्राम आता है,
0: हाँ,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताइए कि इसकी पहली तोड़ाई हो चुकी है, तो 15 किलो आपके पास व्यापारी खुद आ जाता है या फिर आप बाजार में जाके देते हैं?
0: नहीं, जिससे ज्यादा निकलता है तो व्यापारी आ जाते हैं, वो लोग को फोन करते हैं तो वो लोग घरे पहुंच जाते हैं। जैसे कि मतलब 10 क्विंटल निकला, 8 क्विंटल, 10 क्विंटल, तो वो लोग आते हैं।
1: तो अच्छा, ये बताइए कि ये जो ड्राफ्टिंग का लगाने वाला, इसके बारे में आपको पता कैसे चला, कैसे जाने कि आपको कहीं तो कोई बताए होंगे, तो तभी तो इसके बारे में जानकारी।
0: नहीं, एक एक मरते बगल में भैया लोग लाए थे रांची से, तो लोग टमाटर का मंगवाए थे ग्राफ्टिंग वाला, तो सब लगाए, लेकिन खुला में लगाए, मल्चिंग नहीं लगाए थे, तो लोग सक्सेस नहीं कर पाए।
1: अच्छा।
0: तो उस समय फिर हम यूट्यूब में देखने लगे, उस समय यूट्यूब में देखे तो उसका बहुत सब वीडियो देखे हैं। उसके बाद ही फिर वो हमको भी लगा कि नहीं, अब ग्राफ्टिंग ये लगाना है।
1: तो ड्राफ्टिंग मल्च विधि में ही करेंगे तो ही सक्सेसफुल होता है,
0: नहीं, खुला में भी,
1: खुला में भी सक्सेसफुल होता है।
0: खुला में भी
1: अच्छा
0: सक्सेसफुल है।
1: अच्छा
0: पिछले बार लगाए थे 150 पौधा, हम उसमें मंगवाए थे 4,000 पौधा, उसमें हमको मिला था 150 पौधा, उसमें 150 पौधा में 3 क्विंटल तोड़ रहे थे।
1: बढ़िया तोड़ाई हो रहा था। तो मतलब आप ये जो बैंगन का पौधा लगाए हैं, ये कितने एरिया में लगाए हैं?
0: ये पौधा यहाँ पे सामने में लगा हुआ है, ये 1500 पौधा का प्लॉट है,
1: हाँ
0: और उधर आर वो प्लॉट है,
1: हाँ हाँ
0: ये नदी की उस साइड में है,
1: हाँ नदी के पास में,
0: तो वहाँ पे वही 3,000 का प्लॉट है।
1: वो 3,000 वहाँ पौधा और यहाँ 1,500, मतलब 4,500 का आपने पौधा लगाया है। मतलब अच्छी, तब तो फसल फल की तोड़ाई बहुत अच्छी होती है। आपको तो बाहर भी भेजते होंगे, तब तो
0: बाहर जाते हैं।
1: बाजार आपका बाहर चला जाता होगा, मतलब यहाँ घर पे ही आकर के व्यापारी ले जाता है।
0: घर ऐसे।
1: अच्छा, ये तो आपने, हम देख रहे हैं कि बगल में कद्दू भी लगा हुआ है, और आप अभी बता रहे थे कि करेला भी लगाए हैं, और क्या क्या लगाने वाले हैं?
0: अभी महीना पानी अब छूटेगा, खेत तैयार करेंगे तभी हो पाएगा,
1: हाँ, अच्छा,
0: बारिश का
1: तो जैसे
0: सीजन
1: कि
0: अभी।
1: आपने बोला कि करेला आप लगाए हुए हैं और कद्दू, तो इसकी तैयारी कैसे किए, क्या किए?
0: नहीं, उसी जो बैंगन का जो सेम प्रोसेस था, प्रोसेस में उसी मल्चिंग में लगाए हैं कद्दू और करेला भी।
1: अच्छा, उसी मल्चिंग में भी, यानी कि कद्दू का भी खेती और करेला भी मल्च विधि में
0: नहीं,
1: ही लगाए हैं।
0: जैसे कि लाइन का लास्ट में जो होता है ना, वो जगह थोड़ा सा हम ये दो एक पौधा बैंगन ने लगाए, उसमें कद्दू डाल दिए।
1: अच्छा, ये जो आप बोले मल्च वाला में जो मेड़ बनता है, वो छह इंची तक भी बनता।

0: है, 6 फीट तक भी बनता है चौड़ा।
1: हम्म,
0: आप 4 फीट की है ना,
1: ये मेरा 4.5 फीट का है।
0: 4.5 फीट का ये चौड़ा है मेड़। तो इसमें आप, मैंने जहाँ तक देखा है, जाना है, तो वो लगता है कि दोनों साइड में पौधा लगाते होंगे,
1: दोनों साइड में सिंगल।
0: सिंगल, मतलब वो
1: इसका पेड़ जो
0: इतना।
1: ग्राफ्टिंग है ना,
0: हाँ,
1: वो ज्यादा फैलते हैं,
0: अच्छा, जड़ उसका काफी फैलता है।
1: जड़ भी फैलता है, पेड़ भी बहुत ज्यादा फैलता
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा
1: मतलब एक पेड़ 3-4-5 फीट, 3 फीट तक ले, तीन फीट तक
0: फैलेगा,
1: ले फैल जाता है।
0: मतलब
1: तो
0: ये जो
1: दोनों
0: अभी
1: साइड में
0: अभी
1: अगर
0: अभी ये जो
1: मेरा
0: घुटना के बराबर आया है, ये हमको लगता है कि और ऊंचा होगा पौधा,
1: ये भी 6-7 फीट तक जाएगा।
0: 6-7 फीट तक जाएगा ये पौधा। वाह,
1: वैसे भी हमको खुटा डंटा इसमें लगाना है अभी।
0: अच्छा, खुटा डंटा नहीं लगाया है तो अभी खुटा लगाना होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा
1: ज्यादा
0: जाएगी।
1: ही जाएगा,
0: अच्छा, मतलब ये आदमी लोग के ऊंचा इतना।
1: आदमी से भी ऊपर चला जाते हैं।
0: अच्छा, ड्राफ्टिंग का ये है, तो मतलब ड्राफ्टिंग से किया जाए तो काफी बेनिफिट भी मिलेगा।
1: बेनिफिट भी है, बस केवल उसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा रखना पड़ता है,
0: हम्म,
1: दवा खाद पानी पे।
0: बढ़िया से देते रहे तो वो अच्छा पैदावार देता है। मतलब ये काफी दिनों तक आपका ये बैगन का पौधा लगेगा।
1: मतलब ये तो 7-8 महीना तो ऐसे ही तोड़ाई करेंगे,
0: हम्म,
1: उसके बाद जब काम हो जाएगा तो फिर इसको कलम कर देंगे, तो फिर से नया पेड़ सा
0: मतलब
1: इसमें
0: पूरा
1: फिर
0: ठंडा आपका ये पौधा फल
1: पूरा
0: देगा,
1: घींच देगा।
0: पूरा खींच देगा पूरा, मतलब होली तक चला
1: हाँ,
0: जाएगा।
1: होली तक चला जाएगा।
0: ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मिथुन जी।
1: उसके बाद फिर इसको हम कलम कर देंगे, फिर
0: हम्म,
1: खाद उद चला देंगे, तो फिर गर्मी में फिर मार्च अप्रैल में फिर चालू हो जाएगा फिर।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये तो मतलब एक बार खर्च करके अगर लगाया जाए, और इसको मल्च विधि से लगा करके ड्राफ्ट का पौधा, तो काफी अच्छा बेनिफिट देगा आपको। तो मिथुन जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखा, अभी हम इन सुने थल ये जानकारी, और जानकारी हले कि ग्राफ्टिंग तकनीक और मल्चिंग विधि से कातरी खेती करो हथिन कर बारे में। और हमरा उम्मीद है कि हम इनकर किसान भाई सब इनकर जानकारी से जरूर लाभ उठेथिन, और अब अपन बातचीत के आगे बढ़ावे के चाहिए। और देखा कि हम इनकर किसान भाई सबन के आय के बढ़ावे खातिर, देखा कि फसल के विविधीकरण, यानी कहल जाए कि पारंपरिक फसल के एक ही फसल के जगह पे अलग अलग फसल उगावे के बारे में है। देखा कि ये बड़ी जरूरी हो है कि हम इन फसल के विविधीकरण के इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए। काहे कि देखा कि किसान सभी के देखा से एकर से हो का है कि उनकर आर्थिक सुरक्षा भी होते है। जैसे कि एक फसल अगर खराब हो गए नुकसान, तो ओकर जगह पे दूसरा फसल लगा के हम इन ओकर भरपाई कर सको ही है, जेकर से उनकर आय हमेशा बनल रहते। और एकर अलावे धान गेहूं के अलावे दलहन तिलहन फल सब्जियन या औषधीय पौधा उगावे से बाजार में बेस दाम भी मिलो है। और साथ में देखा कि दलहनी फसल, देखा कि देख ओकर में हम इनके माटी के जो नाइट्रोजन मिलो है, ओकर से माटी के उपजाऊ क्षमता बनल रहो है। और देखा कि वो रास आर एकर से हो का है कि रासायनिक खाद के पर जो खर्च हुआ है वो कम हुआ है। धान जैसन फसल ज्यादा पानी वाला फसल लगावे के बजाय हम इन देखा कि हम इन कम पानी में होए वाला फसल, जैसे कि जे कम पानी में धान तैयार होते हैं, या जैसे कि मक्का लगा दिए या चना उगा दिए, तो ओकर से देखा कि हम इनके जमीन के जल स्तर है वो सुरक्षित रहते। और साथ में देखा कि अलग अलग समय पर पके वाला फसल बोवे से किसान सभी के साल भर देखा कि कमाई बनल रहते हैं। तो यह जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा विदाई लिए के समय हो गए। तो हमारा मीनाक्षी के अनुमति देथिन। जोहार।

0: समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी।
1: खेती
0: राज्य मंत्री परिषद की बैठक में आज 53 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य सरकार ने मिवी रामजी की नियमावली को अपनी हरी झंडी दे दी है। इस बैठक में राज्य के विकास और नीतिगत सुधारों से जुड़े कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं। झारखंड

0: हाई कोर्ट ने राज्य के कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मेंटेबिलिटी पर जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। राज्य में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए राज्यव्यापी होम टू रोल वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है। आगामी 4 सितंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य नए पात्र नाम जोड़ना और फैमिली टुगेदर स्टिकर लगाकर एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर सुनिश्चित करना है। साहिबगंज में भी यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवा की आम लोगों और व्यापारियों ने सराहना की है। अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने बताया कि डिजिटल लेनदेन अब सुदूर गांवों तक पहुंच चुका है, जिसे ग्रामीण वित्तीय रूप से साक्षर हो रहे हैं। पलामू के मेदिनीनगर स्थित डिज्नीलैंड मेले में बाल श्रम के खिलाफ संयुक्त छापेमारी की गई। श्रम विभाग और बाल कल्याण समिति ने 7 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। अधिकारियों ने नियुक्ताओं को चेतावनी देते हुए बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप 2026 में जमशेदपुर के पावर लिफ्टर मृत्युंजय पाठक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीते हैं। उन्होंने बेंच प्रेस स्पर्धा में स्वर्ण और डेडलिफ्ट में कांस्य पदक अपने नाम किया। 1 वर्ष के कड़े अभ्यास और शाकाहारी आहार के दम पर उन्होंने ये राष्ट्रीय सफलता हासिल की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युव वाणी।

कार्यक्रम युवा ने सुन रहे तमाम श्रोताओं को सुनील का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, वर्तमान में कैरियर का चुनाव मात्र उनमें मिल रही सुविधाओं से नहीं आंका जा सकता, इसके लिए कुछ जरूरी बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मसलन आपकी अभिरुचि, साथ ही आपकी मेहनत और सबसे बड़ी चीज आपकी तैयारी। युवा दोस्तों, करियर के चुनाव की तैयारी आपके मन में 7वीं-8वीं कक्षा से ही धीरे धीरे मूर्त रूप लेने की होनी चाहिए। 10वीं-12वीं के बाद अपनी रुचि और समर्पण तथा आपकी योग्यता के अनुकूल करनी होगी। यदि आप स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद ही इस पर ध्यान दें। यदि कोई तकनीक के क्षेत्र में जाना चाहता है तो प्रशिक्षण और उस क्षेत्र में पारंगित होना एक सर्वमान्य तथ्य है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब भी आप करियर के चुनाव की सोचे तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। युवा दोस्तों, कार्यक्रम में हमारी और आगे भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: युवा दोस्तों, वर्तमान समय में करियर के कई रास्ते आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, मसलन गीत संगीत, खेल, अभिनय, इन्फ्लुएंसर इत्यादि। मुद्दा यह है कि आपकी अभिरुचि किस पे है। आज संगीत के क्षेत्र में भी व्यापक अवसर है। इसी अवसर को विस्तार से अवगत कराने के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं संगीत शिक्षक अशोक कुमार से सूरज रजक की बातचीत।
5: श्रोताओं, संगीत को चेतना कहा गया है, संगीत को शिक्षा सामर्थ्य कहा गया है। संगीत कहें कि जीवन की गतिशीलता से जुड़ा है, संगीत स्वाध्याय भी है, संगीत प्रेरणा भी है, और संगीत जीवन धारा भी है। संगीत के जब इतने विविध आयाम हो तो संगीत के साथ संगीत के प्रति रुझान स्वतः बढ़ जाता है, और संगीत के प्रति साधना करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं संगीत के शिक्षक, वरीय शिक्षक हैं अशोक सिन्हा जी, और लगभग 3 दशक से वो संगीत के साधना कर रहे हैं, खुद संगीत के साधना कर रहे हैं और साथ ही बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। तो आज इनसे संगीत के इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे कि संगीत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और खास करके आज संगीत रोजगार से भी आकर जुड़ा है, तो रोजगार भी किस तरह इससे प्राप्त लोग कर रहे हैं, इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्कार।
5: संगीत के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, उसके बाद और बात आगे करेंगे।
6: तो संगीत तो ईश्वर का सबसे अमूल्य, मानव को दिया गया सबसे अमूल्य देन है। जैसे सूरज की रोशनी है, वर्षा का जल है या वायु है, सभी को समान रूप से प्राप्त है। तो संगीत को भी आप अभ्यास करके, मेहनत करके इसको भी प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने शुल्क दिया, सभी के अंदर संगीत है,
5: मतलब भावना भीतर से
6: भावना होनी चाहिए। अपने मनोभावों को स्वर के माध्यम से प्रकट करें, संगीत का मतलब ही है। और हमारे देश में 2 संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय।
5: जी,
6: और उत्तर भारतीय संगीत को ही हम लोग हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं, और दक्षिण भारतीय संगीत को ही कर्नाटक संगीत कहते हैं। संगीत तो अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, योगा से भी जुड़ा हुआ है। संगीत का मनोभाव के द्वारा जो हम प्रकट करते हैं, उस पर सिर्फ मानव पर तो असर पड़ता ही है, ये पशु पक्षियों पर भी और पेड़ पौधे वृक्षों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। अनेक हमारे देश के अलावा दूसरे देशों में भी इस पर बहुत रिसर्च किया गया है।
5: जी बिल्कुल,
6: हमारे यहाँ बहुत मशहूर मध्यकाल में तानसेन, उनका नाम तो सब लोग जानते हैं, तो एक बार राग तोड़ी, एक बड़ी मशहूर राग है हिंदुस्तानी संगीत में, तोड़ी राग, उसका जब गायन कर रहे थे तो उनका स्वर की मधुरता को सुनकर मृग, उसको हिरण बोलते हैं, हिरणों का झुंड उनके पास आ गया। ये प्रमाणित करता है कि उन पर कितना प्रभाव पड़ता है। रसिया के बारे में एक बार हम देख रहे थे कि वहाँ रिसर्च किया गया, जो बहुत उछल कूद मचाने वाले चूहा लोग, उसको बहुत मधुर ध्वनि, पियानो का बहुत मधुर धुन सुनाया गया, तो बड़ा शांतिपूर्वक। गोरिल्ला प्रजाति का ही जो बंदर हैं पर असर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय है चेन्नई में, वहाँ के साइंटिस्ट लोग किए हैं कि खास करके गेहूँ, केला और धान के पौधों की जो संगीत के साथ उसको जोड़ा गया, मधुर ध्वनि के साथ, उसका ग्रोथ भी बेहतर हुआ
5: और उसकी क्वालिटी भी अच्छी,
6: क्वालिटी भी अच्छी हुई। डेनमार्क में, स्वीडन में तो ऐसा सरकार के द्वारा प्रबंध किया गया कि जब गाय दूध देती है तो वहाँ पर एक मधुर ध्वनि संगीत की वहाँ पर बजाना

0: और ऐसा देखा गया है कि 10 से 12% अतिरिक्त दूध मिलता है जो सामान्य अवस्था में बिना संगीत का। तो कहने का मतलब हुआ कि संगीत का प्रभाव तो मानव पर तो पड़ता ही है, लेकिन प्रकृति के सभी जीवों पर, पेड़ पौधों पर भी इसका असर होता है। ये बड़ा अद्भुत चीज है।
1: मतलब संगीत का संबंध कहें कि आत्मिक है,
0: आत्मिक है।
1: हर जीव है, जहाँ आत्मा है वहाँ संगीत का असर होता है।
0: असर होता है, ये रूह से ही निकलती है, रूह से निकल के रूह तक जाना।
1: ये तो बात हुई संगीत के बारे में, तो संगीत की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जो विधिवत शिक्षा की क्या व्यवस्था आज अपने यहाँ है, इस बारे में बताइए।
0: अपने यहाँ तो जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था थी, आज बड़े बड़े उस्तादों के यहाँ तो है, लेकिन सामान्य अवस्था में जैसे छोटे शहरों में उस तरह की तो व्यवस्था नहीं है। वो बहुत अच्छे शिक्षकों की भी थोड़ा कमी है, अभाव है सभी शहरों में। योग गुरुओं की बड़ी कमी है। आज के जमाने में इस शिक्षण प्रणाली के साथ इसको जोड़ा गया, स्कूल कॉलेज में भी एक विषय डाला गया इसको।
1: अब जागरूक हो रहे हैं,
0: जागरूकता है, मैंने इसके संगीत को जागरूक करने के लिए अभिभावकों को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा। उनको अपने बच्चों को अगर उनको देखें कि अगर उनके अंदर संगीत है, संगीत के प्रति रुचि है, तो वो अपना योग गुरु के पास उनको ले जाएं, क्योंकि संगीत ये बड़ी कठोर साधना, परिश्रम, मेहनत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, किताबी चीज नहीं।
1: संगीत की शिक्षा के बारे में जो नहीं जानते हैं लेकिन उनकी भावना है कि वो संगीत सीखें, अपने बच्चों को बताएं, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करें?
0: वो शुरुआत योग, पहला तो योग गुरु कि संगीत गुरुमुखी विद्या है। इसको हम किताबों में पढ़कर या यूट्यूब देखकर, आजकल सोशल मीडिया का भी बड़ी प्रभाव है, अलग अलग ऐप उप आ गया है जिसके वजह से भी
1: पारंपरिक शिक्षा, पारंपरिक नुकसान
0: ही ज्यादा होता है मेरे नजरिए से। तो आप योग गुरु को ढूंढें, अपने आसपास जो भी आपको नजर आता है वहाँ विधिवत शिक्षा की शुरुआत करें।
1: किस उम्र में शुरुआत की जा सकती है?
0: अरे इसका सबसे बढ़िया उम्र है 5 से 7 साल 8 साल का बीच में उनको लाएं, तब जाकर वो 15-17 साल में कुछ गाने के योग हो जाएंगे, और उतना धैर्य उनको रखना पड़ेगा।
1: संगीत के जो विविध विधाएं हैं उसके बारे में,
0: संगीत हमारे यहाँ जो संगीत है इसमें गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों के समावेश को संगीत का, तो इनकी रुचि देखनी पड़ेगी कि जो विद्यार्थियों में उनका रुचि किस विषय में, तो उस हिसाब से उनको उस विधा में डाला जा सकता है। सब बतलाएंगे कि इसमें
1: रुचि पर ही निर्भर करता है या अभ्यास से भी?
0: नहीं, अब रुचि पर तो फिर सीखना शुरू किया, लेकिन अभ्यास तो बिना अभ्यास का ही, कठोर साधना का ही आपको हासिल नहीं हो सकता है।
1: गायन के साथ जैसे वादन के लिए अलग अलग हारमोनियम है या दूसरे वाद्य यंत्र हैं, तो उसके साथ गायन भी अनिवार्य है या सिर्फ वादन भी किया जा सकता है?
0: अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन संगीत की परिभाषा ही है कि स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो चाहे वो तबला सीखे तो उसको भी स्वर का अभ्यास तो जरूरी है, कहे कि जो गायक जिस भी सुर से गा रहा है, जिस भी स्केल से गा रहा है, तो तबला वहीं से मिलता है।
1: मतलब कोई ये गायन कर रहा है, लोग वादन कर रहे हैं, तो भी उनके साथ उनका तालमेल है।
0: तालमेल पूरा उसी स्केल में, उसी सुर में उसको मिलाना है। तो जो कोई भी वाद्य यंत्र सीखना चाहे, या हारमोनियम या गायन वादन किसी में भी, तो उसको स्वर भी जरूरी है और लय भी जरूरी है। तो स्वर भी लगाना पड़ेगा और उसको ताल का भी जानकारी, बेसिक जानकारी, और बाकी फिर उसमें जिसमें उनका रुचि है अगर गायन में है तो उसमें विशेष तो जाएंगे, लेकिन स्वर और लय तो एकदम जरूरी है उसको।
1: रागों के बारे में थोड़ा बताइए।
0: ये भारतीय संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ समय के अनुसार, मैंने सभी रागों के गाने के अलग अलग समय, और ये प्राचीन जो हमारे गुरुओं के अपने अनुभव और मनोविज्ञान के आधार पर इसके सभी रागों के गाने के अलग अलग समय निर्धारित किए गए, और ये बड़ी ये सत्य है कि उसी समय अगर उस राग को गाया जाए तो उसके आनंद, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। ये विश्व के संगीत में कहीं भी नहीं। हमारे यहाँ रागों के अनुसार उनके गाने का भी समय, ऋतुओं के अनुसार भी, कि बसंत के मौसम का थोड़ा सा अलग बाहर राग है तो हम इसको कभी भी गा सकते हैं, मेघ मल्हार राग वर्षाकालीन, ऐसे उसका गाने का समय है, लेकिन उस मौसम में उसको कभी भी गाया जा सकता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। और पूरे 24 घंटा में, ऐसा बोला गया है हमारे शास्त्रों में भी है, कि ये 6 ऋतुओं बदलते रहते हैं समय के अनुसार, जैसे सायंकाल, मध्यरात्रि, प्रातःकाल, संधि प्रकाश काल, और उस समय के अलग अलग राग भी हैं जिनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये तो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ, आदमी के मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ, तो उस समय में अगर उसको, उस राग को गाया जाए तो उसका विशेष आनंद मिलता है उनको।
1: तो जैसे बच्चे मान लेते हैं 5-7 साल की उम्र में बच्चे आपके पास आते हैं, तो उन्हें 12 साल के दौरान किस तरह की शिक्षा दी जाती है?
0: पहले तो प्रारंभिक उनको स्वर का, अगर गायन करना है तो उनका वर्णमाला कोई भी विषय हम सीखना चाहें।

0: हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी कुछ भी, तो पहला तो वर्णमाला उनको जानना जरूरी है। अगर वो गायन में आए हैं तो सारे गामा पधा निसा, सात स्वर की साधना तो उनको अनिवार्य है। उसके बाद फिर उनको अलंकार सिखलाया जाता है जिसमें स्वर भी और लय भी साथ में चलता है, फिर राग उस हिसाब से, इस तरह से विधिवत उनको अगर प्रशिक्षण दिया जाए
1: मतलब बेहतर
0: बेहतर कर सकते हैं।
1: और है आज के जो संगीत की जो शिक्षा है उससे रोजगार की कौन कौन सी संभावनाएं हैं?
0: आज तो पुराने समय के हिसाब से आज तो इसकी रोजगार के बहुत माध्यम बन गए हैं। इसमें रोजगार मतलब भी हो गया, पुराने जमाने में जो मध्यकाल में भी लोग राजा महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े कलाकार रहते थे, उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। आज गायक होते थे अकबर के जमाने में, उसके बाद में अभी इसको विश्वविद्यालय के शिक्षण पद्धति में भी जोड़ा गया, स्कूलों में भी इसको कंपलसरी विषय बनाया गया है। स्कूलों में अभी सरकार भी प्रयास कर रही है कि संगीत शिक्षक अनिवार्य हो, चाहे वो निजी स्कूल हो। तो अभी जब भी शिक्षकों की बाली निकलती तो वहाँ भी संगीत शिक्षक की अपॉइंटमेंट है, वहाँ भी निकल रही है अभी हमारे झारखंड में भी है, और बीएड कॉलेज में भी इसको कंपलसरी विषय बनाया गया है। ये अलग अलग आपको देखिएगा कि सेना के बैंड में भी या पैरा मिलिट्री है वहाँ भी बैंड में भी कलाकारों की नियुक्ति होती है, कलाकारों की जरूरत है।
1: न्यूनतम और अधिकतम क्या मतलब? हाँ, कम से कम जहाँ से रोजगार प्राप्त हो,
0: जहाँ से रोजगार प्राप्त हो तो उसको 6 साल का एक कोर्स होता है जिसको डिग्री कोर्स बोलते हैं। मतलब वो स्नातक के बराबर का कोर्स है प्रयाग संगीत समिति के हिसाब से, तो 6 वर्ष का कोर्स जो है वो संगीत में स्नातक की डिग्री के बराबर है, और सरकार अभी उसी डिग्री को मान्यता देती है। जिससे हम हाई स्कूल तक के शिक्षकों की बहाली निकलती तो उसके योग होते हैं।
1: और इसके ऊपर?
0: इसके ऊपर फिर प्रवीण एमए करना, ये सेम वो सही विषय है कि अगर हम एमए करें फिर उसके बाद नेट का एग्जाम पास करें। अगर कॉलेज में व्याख्याता बनना है तो आप प्रवीण करें, फिर आप नेट का एग्जाम पास करें, फिर पीएचडी करें, फिर आप उसके योग हो जाएंगे।
1: समय तो इतना ज्यादा नहीं बचा है कि हम आपसे और बातचीत करें, तो चलते चलते हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो आज की पीढ़ी है उसको संगीत किस तरह से लेना चाहिए।
0: आज की पीढ़ी से गुजारिश है, उनसे ज्यादा उनके अभिभावकों से, कि इनको बड़ी गंभीरता से कहें कि ये संगीत आपको उड़ते उड़ाते मिलने वाली चीज नहीं यार, ये किताब से, ऐप से या किसी दूसरे माध्यम से आप नहीं सीख सकते। ये गुरुमुखी विद्या है जो आपको गुरु के पास बैठ कर ही आप इसको
1: गुरु के सानिध्य में
0: कठोर साधना रियाज तो करना ही पड़ेगा,
1: उनके देख रेख में
0: उसके बिना ये संभव नहीं।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, ये बातचीत सुन रहे हैं, उन्हें इस बातचीत से भी लाभ हुआ होगा और आज ये बात जरूर सीखे होंगे कि गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि गुरु का सानिध्य उन्हें भी मिलेगा। और अशोक सिन्हा जी, आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, संगीत के क्षेत्र में करियर की संभावना। इस बारे में बता रहे थे संगीत के शिक्षक अशोक कुमार, और इनसे हमारे लिए बातचीत की थी सूरज रजक ने। युवा दोस्तों, आज का युग डिजिटल है और सोशल मीडिया युवाओं का चहेता प्लेटफॉर्म है। इसके सार्थक और सावधानीपूर्वक उपयोग की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। किसी भी पोस्ट के लिए आप सावधानीपूर्वक उसके तथ्यों की जांच करें और तदनुसार अपनी प्रतिक्रिया दें या उसका अनुपालन करें। कार्यक्रम में चलते चलते ये गीत आपके मनोरंजन के लिए हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर।

तो श्रोताओं, आज के युवाने में बस इतना ही। अपने युवा साथियों से एक अपील, मेहनत कीजिए और खुश रहिए। अपने दोस्त सुनील को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने रांची केंद्र पर, जहां से प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का आज का अंक आप सुनेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। वीवी रामजी नियमावली सहित कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को। देश में यूपीआई सेवा के सफल 10 वर्ष पूरे होने पर झारखंड समेत देशभर में उत्साह। चैंबर ऑफ कॉमर्स और आम जनता ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। एमएमडीआर बिल पर राज्य में सियासी घमासान। कांग्रेस 27 अगस्त से करेगी राज्यव्यापी आंदोलन। भाजपा का पलटवार, भ्रम फैला रहा है विपक्ष। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 27 अगस्त को राज्यभर के कॉलेजों में युवा कनेक्ट और खेलो इंडिया संवाद का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को करीब 3.94 अरब और धनबाद मेडिकल कॉलेज को 4.95 अरब रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिससे एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ेंगी। ग्रामीण रोजगार के लिए वीवी रामजी योजना को हरी झंडी दी गई है। साथ ही वज्रपात और लू को राज्य की स्थानीय आपदा सूची से हटाकर केंद्र की प्राकृतिक आपदा सूची में शामिल किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मेंटेबिलिटी पर जवाब तलब किया। याचिका में आरोप है कि 1 साल से अधिक बीतने पर भी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे लेकर हजारीबाग में उत्साह है। जिले में कुल लेन देन में छोटी खरीदारी की हिस्सेदारी 63% और बड़े ट्रांसफर की वैल्यू 71% पहुंच गई है। चैंबर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय लोगों ने व्यापार को सुगम व पारदर्शी बनाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
1: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा मतलब किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है। और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: साहिबगंज में भी यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवा की आम लोगों और व्यापारियों ने सराहना की है। अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने बताया कि डिजिटल लेन देन अब सुदूर गांव तक पहुंच चुका है, जिसे ग्रामीण वित्तीय रूप से साक्षर हो रहे हैं। इससे बैंकों में भीड़ कम हुई है, नगद ले जाने का जोखिम घटा है और खुदरा पैसों की किल्लत दूर होने से व्यापार बेहद सुरक्षित व आसान हो गया है।
2: जहां एक तरफ लोगों की सुविधा हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग पर जो कार्य का बोझ था वो भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि यूपीआई एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिक्योर ट्रांजेक्शन सिस्टम है, जिससे लोगों में एक सुरक्षा का भी माहौल बनता है।
0: यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बधाई दी है। अन्नपूर्णा देवी ने इसे वैश्विक मंच पर भारत को स्थापित करने वाली डिजिटल क्रांति की मिसाल बताया। वहीं संजय सेठ ने कहा कि बिना किसी मदद के आम लोगों द्वारा डिजिटल पेमेंट करना तकनीक की असली ताकत और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। राज्य में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए राज्यव्यापी होम टू रोल वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है। आगामी 4 सितंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य नए पात्र नाम जोड़ना और फैमिली टुगेदर स्टिकर लगाकर एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा धांधली मामले में छात्रों पर दर्ज मुकदमों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा नेताओं ने रांची सदस्यों से मुलाकात कर प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को फंसाना बंद कर उपद्रवियों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए, अन्यथा भाजपा आंदोलन करेगी।
3: तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनकी एफआईआर भी स्पष्ट है कि वहां जाकर के मारपीट या बदमाशी वहां कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को एफआईआर करना चाहिए। लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो।
0: एमएमडीआर संशोधित बिल पर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र पर आर्थिक हमले और आदिवासी अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में कांग्रेस 27 अगस्त को जिला स्तरीय धरना और 7 सितंबर को राजभवन का घेराव करेगी।
4: 9 जजों का ये बेंच ने जो वीवी नागराजन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई थी उसका 8-1 का फैसला था, 8-1 का फैसला था कि राज्य को उसके खनिज और जो उससे जुड़े हुए अधिकार हैं वो राज्य के पास ही रहेंगे।
0: दूसरी तरफ भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे अपनी विफलताओं को छिपाने और मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल भ्रम फैला रहे हैं। खूंटी में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने गुम हुए 53 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के जरिए इन फोनों को खोजा गया।
5: इनका मोबाइल गुम हो जाने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए खूंटी पुलिस ने उनके मोबाइल उन तक सुपुर्द करने का काम किया है। इसके तहत हम लोगों ने आज 53 मोबाइल जो है उनके ओरिजिनल धारकों को लौटाए हैं। इसके लिए मुख्यालय से भी हम लोग को आदेश प्राप्त है और समय समय पर हम लोगों को यह कार्य करने के लिए कहा गया है।
0: पलामू के मेदिनीनगर स्थित डिज्नीलैंड मेले में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी संयुक्त छापेमारी की गई। श्रम विभाग और बाल कल्याण समिति ने 7 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। अधिकारियों ने नियोक्ताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के बजाय 27 अगस्त को विशेष रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर खेलो इंडिया संवाद और युवा कनेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 लाख से अधिक युवाओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि जिलों के 2 कॉलेजों में युवा जन प्रतिनिधियों से संवाद कर विकसित भारत और 2036 ओलंपिक पर QR कोड से सुझाव देंगे।
6: उद्देश्य है कि युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से कैसे जोड़ा जाए, उनको उस विषय पे चर्चा होगी। और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछले 12 वर्षों में खेल को लेकर जो परिवर्तन हमारे देश में हुआ है उसके बारे में युवाओं को, उस संदेश को युवाओं तक पहुंचाना है।
0: पश्चिम बंगाल के कल्याणी में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप 2026 में जमशेदपुर के पावर लिफ्टर मृत्युंजय पाठक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीते हैं। उन्होंने बेंच प्रेस स्पर्धा में स्वर्ण और डेडलिफ्ट में कांस्य पदक अपने नाम किया। एक वर्ष के कड़े अभ्यास और शाकाहारी आहार के दम पर उन्होंने ये राष्ट्रीय सफलता हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। वीबी रामजी नियमावली सहित कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को। देश में यूपीआई सेवा के सफल 10 वर्ष पूरे होने पर झारखंड समेत देशभर में उत्साह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आम जनता ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। एमएमडीआर बिल पर राज्य में सियासी घमासान। कांग्रेस 27 अगस्त से करेगी राज्यव्यापी आंदोलन। भाजपा का पलटवार, भ्रम फैला रहा है विपक्ष। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 27 अगस्त को राज्यभर के कॉलेजों में युवा कनेक्ट और खेलो इंडिया संवाद का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: विश्व संवाद केंद्र की ओर से रांची में शतायु संघ और महिला सहभागिता पुस्तक की परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस पुस्तक में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक जागरूकता को लेखिका ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं विज्ञान, खेल, प्रशासन और अन्य सभी क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: राज्य सेविका समिति के माध्यम से महिलाओं की सेवा, शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में दीर्घकालीन सहभागिता का भी उल्लेख है। मातृशक्ति की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण को भी निरंतर दिशा देने का काम करती है।
1: समारोह को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हिंदुत्व का मानना है कि रहन सहन, खान पान और उपासना विधि अलग अलग होने के बावजूद सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति भी हमें यही सिखाता है कि अलग अलग रूप रंग होने के बावजूद सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए।
3: तो जिसको भी मानते हो, लेकिन हम एक नई शरीर का मानव है, उसके नाते हमारे लिए सभी पूरे संसार में जो भी लोग रहते हैं वो हमारे परिवार है। उनकी रहन सहन भले कुछ भी हो, उनकी उपासना भले कुछ भी हो, यही तो हिंदुत्व है। और इसलिए अपने यहाँ लोगों ने यह भी कहा कि वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी के सुख के जो को कामना, की जो कामना की निरोगी कामना, ये किसी खास लोगों ने नहीं कहा कि हमारे देवी को मनोगे तभी तो स्वर्ग के लिए पहुंचोगे, नहीं तो आप नर्क के घाट में बनोगे, ये हमारे पुरखों ने नहीं कहा।
1: देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर रांची के धुरवा स्थित राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान में कांग्रेस की ओर से पुष्प माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राजीव गांधी 21वीं सदी के भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने अल्प कार्यकाल में सूचना क्रांति, युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी, मताधिकार की उम्र सीमा घटाने और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने जैसे ऐतिहासिक कार्य किए थे।
4: सबसे कम आयु में हुए प्रधानमंत्री बने और इसी परिस्थिति में देश को संभाला जब उनकी माँ का निधन हो गया।
1: भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश के दिव्यांगजनों को दैनिक जीवन से जुड़ी हर सुविधा उपलब्ध कराने और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए तत्पर है। इसी क्रम में रांची में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय का लोकार्पण करने के बाद निगम के CMD प्रवीण कुमार ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजनों को भी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिले।
5: यहाँ से हम लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि पहले हर चीज कानपुर से डील होती थी रीजनल लेवल और फिर सीधा हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस के माध्यम से अब लोगों को तुरंत चीजों का निष्पादन होगा, चाहे वो सर्विस रिलेटेड मैटर हो या लोगों को जरूरतें उनकी पूरी करनी हो।
1: कार्यक्रम के दौरान 24 दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम उपकरणों का भी वितरण किया गया। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम झनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रकृति से नाता जोड़ू, प्रदूषण से धरती के बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनविया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: जुगनी बहन के जोहार।
1: ई कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और कहो दादा, का हाल खबर है और बटले?
4: हाल खबर तो बढ़िया है और देखो मौसम भी बढ़िया है खेती बाड़ी खातिर, कभी धूप कभी छांव, ये जैसे बहुत बढ़िया खेती बाड़ी खातिर ही मौसम कर दे।
3: मौसम भी बढ़िया है और खेती बाड़ी भी बढ़िया हो लक है। और देखो एखन धान कर खेती हो गलक है और निकाई गोड़ाई कर भी बेरा हो गलक है। एखन निकाई गोड़ाई भी हो लगल है और गांव घर बटले तो पारंपरिक विधि से निकाई गोड़ाई होवेला, खुरपी से होवेला, नहीं तो कादो खेते तो हाथे से निकाई गोड़ाई होवेला।
4: तो निकाई गोड़ाई करे खातिर जो है से पारंपरिक तो करते हैं, लेकिन एखन आधुनिक विधि से भी सब जैसे नवा नवा मशीन मन भी आए गलक।
3: तो एखन कर बेरा नवा तकनीक कर बेरा है के, तो अगर हमरे खेती में आधुनिक कृषि तकनीक कर उपयोग करब तो कृषि कार्य आसान होगी और कम लागत में बगरा उत्पादन ले सकेला। तो हमरे के आधुनिक कृषि तकनीक के उपयोग करे चाहिए।
4: सही बात है, और आधुनिक कृषि तकनीक खेती के आसान बनायला और खेती के लाभकारी भी बनायला। इकर में कम जमीन और कम पानी कर उपयोग से बगरा पैदावार ले सकीला, जेकर से किसान भाई बहिन मन का आमदनी बढ़ेला और स्थिति बढ़िया होवेला। तो हमरे के कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक के बुझे है और उकर लाभ लेवे है।
3: देखो कृषि एगो ऐसा क्षेत्र है कि गोटा खेती उद्योग ले भी बहुत जरूरी है। इकर से उत्पादन में वृद्धि होबे करेला, उत्पादन करे के लिए जे प्रक्रिया है उके भी आसान और सुरक्षित बना देवेला, जेकर से किसान भाई मन कर आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएला।
4: सही बात है, खेती में कीट और जीवाणु से खातिर बचाव कर सकेला, इकर जानकारी तो भेटावे करेला और बढ़िया उपाय करे के लिए मदद मिलेला, जेकर से फसल सुरक्षित और बढ़िया रहेला।
3: कृषि तकनीक कर और बात कर ली तो फसल में जे खाद मन डाले कर जे समय होएला, तो हमरे के एखन नवा तकनीक जे ड्रोन कर माध्यम से हमरे किसान मन एक फसल में कीटनाशी दवाई उर्वरक छिड़काव कर सकेला और इकर से कम समय में और जे मजदूर लागे ना वो भी नहीं लागेला।
4: अब आओ कार्यक्रम के आगे बढ़ाते आज की बात से।
3: तो आज की बात में हमरे जानकारी करब लतर वाला सब्जी में कीट प्रबंधन कातेर करल जाएला सेकर बारे में, और इनकर बारे में जानकारी देबे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति प्रिया और इनकर से गोठिया है हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
4: किसान साथियों नमस्कार, आज हम जानेंगे लतर वाली सब्जियों में आधुनिक समेकित कीट प्रबंधन के बारे में, और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति प्रिया, कीट विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के। डॉक्टर प्रीति आपको नमस्कार है।
5: जी नमस्कार।
4: आप हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि लतर वाली सब्जियां किन किन फसलों को कहते हैं और इन लतर वाली सब्जियों में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट किसानों को परेशान करते हैं।
5: जी सबसे पहले किसान भाइयों और बहनों आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए जिन सब्जियों की बेल या लता होती है उन्हें लतर वाली सब्जियां कहते हैं, और इसमें लौकी, करेला, खीरा, कद्दू, तोरई, ककड़ी, परवल आदि प्रमुख होते हैं। इन फसलों में मौसम और फसल की अवस्था के अनुसार अलग अलग कीटों का प्रकोप देखा जाता है, और इनमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं फल मक्खी, लाल कद्दू भृंग, माहू, सफेद मक्खी और थ्रिप्स। कुछ परिस्थितियों में हम माइट यानी लाल मकड़ी की भी समस्या को देखते हैं, लेकिन इनमें फल मक्खी और लाल कद्दू भृंग कुकुरबिट फसलों के महत्वपूर्ण कीटों में आते हैं, जबकि माहू, सफेद मक्खी और थ्रिप्स मुख्य रूप से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।
4: जी तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आधुनिक समेकित कीट प्रबंधन क्या होता है, इसमें नई तकनीक की भी बात हो रही है, तो किसान भाइयों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है।
5: जी बिल्कुल, देखिए आधुनिक कीट प्रबंधन एक समेकित कीट प्रबंधन का ही पार्ट है। इसमें कीटों को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल पद्धति अपनाई जाती है। इसमें केवल कीटनाशकों पर निर्भर नहीं रहा जाता, बल्कि खेत की नियमित निगरानी, कीटों की सही पहचान, कृषि एवं यांत्रिक उपाय, फेरोमोन और स्टिकी ट्रैप, जैविक नियंत्रण और आवश्यकता पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कीटों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि उनकी संख्या को आर्थिक नुकसान की सीमा से नीचे रखना है, ताकि हमारे किसान भाई को फसल में नुकसान ना हो और अनावश्यक कीटनाशक का प्रयोग भी ना करना पड़े। तो आज के समय में ये आधुनिक आईपीएम या आधुनिक समेकित कीट प्रबंधन में मौसम आधारित निगरानी, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट ट्रैप, जैव कीटनाशक, आकर्षक पदार्थ यानी सेमियोकेमिकल और क्षेत्र आधारित कीट प्रबंधन जैसी तकनीक को भी शामिल किया जा रहा है।
4: जी, तो लतर वाली सब्जियों में किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी किस कीट से होती है?
5: जी देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कीट तो बहुत सारे कीट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किसान भाइयों और बहनों मैं आपको बता दूं कि फल मक्खी करेला, ककड़ी, खीरा, लौकी आदि में बहुत नुकसान कर सकती है। इसकी जो मादा फल मक्खी होती है वह फल की सतह के अंदर अंडे देती है, बाद में उसके जो लार्वा होते हैं यानी कीड़े फल के अंदर गूदे को नुकसान पहुंचाते हैं। फल पर छोटे छोटे छेद या धब्बे दिखाई दे सकते हैं, फल अंदर से सड़ने लगते हैं और कई बार समय से पहले फल गिर जाते हैं। करेले या ककड़ी को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर लार्वा भी दिखाई देता है।
4: तो प्रीति जी, आजकल फल मक्खी के लिए ट्रैप तकनीक की काफी चर्चा होती है, तो इसमें नया क्या है?
5: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों और बहनों, आज फल मक्खी के प्रबंधन में ट्रैप आधारित निगरानी और सामूहिक नियंत्रण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर फल मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान भाई सिर्फ रासायनिक नियंत्रण पर निर्भर रहें तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ICAR की 2025-26 की जो कृषि सलाह है उसमें कुकुरबिट फसलों में फल मक्खी के लिए 25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही संक्रमित और गिरे हुए फलों को रोज खेत से हटाना महत्वपूर्ण बताया गया है। फल मक्खी की प्रजाति और क्षेत्र के अनुसार ल्यूर या आकर्षक पदार्थ का चुनाव किया जाता है। इसलिए किसान स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसा के अनुसार क्यू ल्यूर अथवा संबंधित फ्रूट फ्लाई ल्यूर ट्रैप्स का उपयोग करें। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि ये जो फल मक्खी होती है वह उड़कर आसपास के क्षेत्रों में जा सकती है, इसलिए आधुनिक आईपीएम में एरिया वाइड मैनेजमेंट यानी कि पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखकर प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि गांव या आसपास के कई किसान मिलकर संक्रमित फल हटाएं, ट्रैप लगाएं और कीट की निगरानी करें तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा।
4: जी, तो लाल कद्दू भृंग के बारे में बताइए कि किसान भाई इस कीट की पहचान कैसे करें और इसका नियंत्रण किस प्रकार कर सकते?
5: जी बिल्कुल, देखिए ये जो लाल कद्दू भृंग होती है यह विशेष रूप से छोटी अवस्था के पौधों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके जो व्यस्क कीट होते हैं वह पत्तियों को खाते हैं और पत्तियों में छेद कर देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में ही नियमित निरीक्षण करें, दिखाई देने वाले व्यस्क कीटों को पकड़कर नष्ट करें, खेत में खरपतवार और फसल अवशेषों की सफाई रखें और यदि प्रकोप अधिक हो तो कीटनाशक जैसे कि एसिटामिप्रिड 20 WP की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC की 0.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ये दोनों ही कीटनाशक बहुत ही कारगर हैं।
4: जी, तो डॉक्टर प्रीति, अब हम बात करते हैं रस चूसक कीटों की। लतर वाली सब्जियों में कौन कौन से प्रमुख रस चूसक कीट पाए जाते हैं?
5: जी देखिए किसान भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने बताया लाल कद्दू भृंग और फल मक्खी, इसके अलावा लतर वाली सब्जियों में रस चूसक कीट भी बहुत ही सामान्य हैं, आपकी फसलों में जरूर दिखाई देते होंगे। तो लतर वाली सब्जियों में मुख्य रस चूसक कीट जो है उनमें से माहू, सफेद मक्खी और थ्रिप्स प्रमुख है। ये कीट पौधे की कोमल पत्तियों, नई बढ़वार और कभी कभी फूलों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं।
4: जी,
5: तो माहू के नियंत्रण के लिए शुरुआती प्रकोप में नीम आधारित उत्पाद जैसे नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का उपयोग कर सकते हैं। और अगर सफेद मक्खी की बात करें जिसे व्हाइट फ्लाई भी कहते हैं, वह बहुत छोटी और सफेद रंग की होती है और किसान भाइयों आपको पता होगा कि ये पत्तियों की निचली सतह पर बैठती है। पौधे को जब हम हिलाते हैं तो छोटी छोटी सफेद मक्खियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए शुरुआत में पीले स्टिकी ट्रैप जिसे येलो स्टिकी ट्रैप कहा जाता है, खेत की स्वच्छता और नीम आधारित उत्पादों का उपयोग करें। अत्यधिक नाइट्रोजन देने से भी बचना चाहिए। और अगर थ्रिप्स की बात करें तो इसका प्रकोप होने पर पत्तियों पर आपको चांदी जैसी चमक या सफेद भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे, पत्तियां मुड़ती हैं और फूलों को नुकसान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक हो और जैविक तथा यांत्रिक उपायों से नियंत्रण ना हो रहा हो तो आवश्यकता के अनुसार अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
4: जी, तो बारिश के मौसम में लतर वाली सब्जियों में किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
5: जी देखिए, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। अभी बारिश का मौसम भी है तो सबसे पहले बारिश के मौसम में किसान भाइयों और बहनों आप ध्यान रखें कि आपके खेतों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, खेत में अत्यधिक नमी और पत्तियों पर लंबे समय तक पानी टिकने से कई रोग बढ़ सकते हैं। और तीसरा, बारिश के बाद खेत का निरीक्षण जरूर करें क्योंकि कीटों और रोगों की स्थिति तेजी से बदल सकती है।
4: जी, तो अंत में आप हमारे किसान भाइयों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
5: जी, मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जो लत्तर वाली सब्जियां हैं उनमें कीट लगना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन समय पर पहचान और सही प्रबंधन से हम फसल को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले खेत की नियमित निगरानी करें और कीट की सही पहचान करें। फल मक्खी के लिए ट्रैप लगाएं, संक्रमित और गिरे हुए फलों को खेत से बाहर निकालें, रस चूसक कीटों के लिए स्टिकी ट्रैप और नीम आधारित उपाय अपनाएं तथा खेत की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और यदि प्रकोप अधिक हो जाए तभी अनुशंसित कीटनाशक का सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करें।
4: तो डॉक्टर प्रीति प्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को लतर वाली सब्जियों में आधुनिक समेकित कीट प्रबंधन के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
5: जी नमस्कार।
3: तो बड़ा नगर जानकारी मिललक हमरे के लतर वाली सब्जी में कीट प्रबंधन कातिर करल जाला सेकर बारे में, और इनकर बारे में बताला है विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति प्रिया, और इनकर से बातचीत करत रहे हमरे के संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
4: तो खेती बाड़ी कर संगे संगे आओ एगो गीत सुनत थी, कृषि विकास गीत, मुकुंद नायक और संगी मनकर गावाल।
3: चलो सुनब।
6: किसान जवान सुनो।

0: तो एखन हमरे मुकुंद नायक और संगी मनकर गावले कृषि विकास गीत के सुन ली।
1: आगे कार्यक्रम में हमरे किसान से करल गोइठ के सुनब। किसान है बीगा उराव और इनकर से गोठिया है हमरे का संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: किसान भाई बहन मने आज हमर साथे हैं एगो प्रगतिशील किसान बीगा उराव। तो बीगा जी और के जोहार कर रहे थे।
2: जोहार।
0: रावरे रहे वाला कहाँ कर रही?
2: हम हमारा नाम बीगा उराव है, ग्राम चितर कोटा बड़का टोली पोस्ट पाली थाना रातू जिला रांची कर किसान ही।
0: तो रावरे कितना दिन से खेती किसानी कर काम करे?
2: खेती किसानी कर काम जो है जब से हम जवान रही से समय से खेती में इंगेजी हम, ताकि खेती से बहुत हमके पहचान भी बन गया है कि खेती हम करते हैं, सब जाने कि प्रगतिशील किसान है। जैसे कृषि विभाग से भी कई तरह से हमके पहचान बन जाए।
0: तो रौर बाबा किसान रहे और खेती किसानी में उतर गए
2: हैं।
0: एखन रौर ठीना कितना जमीन है?
2: जमीन हमारे जगह 10 एकड़ जमीन है।
0: 10 एकड़ जमीन है। तो 10 एकड़ जमीन में पूरे में रौर खेती करी ला?
2: पूरे में खेती करी ला।
0: और का कर खेती करी ला?
2: एखन तो दो इन में धान लगा ही, जत डाँड हो उकर में टमाटर हो बैगन हो बीन लगा ही, 3 एकड़ में स्वीट कॉर्न मक्का लगा कर सारा तैयारी हो जाए है।
0: अच्छा, तो टमाटर कर खेती रौरे कर ली है तो कितना जगह में कई रही?
2: 1 एकड़ में टमाटर है।
0: 1 एकड़ में? और 1 एकड़ में टमाटर की खेती कर ली है तो कैसे कैसे कर ली है से हमार किसान भाई बहन के बढ़िया से विस्तार से बताओ शुरू।
2: 1 एकड़ में टमाटर लगा ही, 1 एकड़ कर खेत के पहले तैयार कर ली, खेत के तैयार कराल कर बाद में उकर में पूरी तरह से दार बनाए दे ही, जिके बेड कहे ना बेड बनाए के पूरा उकर में ड्रिप सिस्टम लगाए दे ही, ड्रिप सिस्टम कर बाद ऊपर से मल्चिंग भी कर ही प्लास्टिक कर, और उकर बाद में करीब करीब 20 जून आसपास में टमाटर के लगाए ही।
0: अच्छा,
2: और पूरा ड्रिप कर साथ व्यवस्था, उस समय थोड़ा थोड़ा गर्मी भी रहे, लगाल कर बाद धूप में लगलग किया रहे बड़ा दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी कुआं में कुछ पानी रहे उकर से जीवित रख ली और टमाटर के जिंदा रख के एखन के प्रोडक्शन बढ़िया कर रही।
0: टमाटर अब तैयार हो
2: गया? निकला थे आई जो करीब करीब 3 क्विंटल बाजार लाइन रही।
0: अच्छा,
2: रेट भी बढ़िया मिल लग 25 रुपया।
0: तो टमाटर की खेती जैसे एखन किसान भाई मन मन कर रहे है और टूटत भी है, तो एखन रोग मन भी लागल कोई टमाटर
2: रोग उग लग है? क्योंकि एखन जो फंगस रोग लगे ला नहीं उकर से उकर पौधा के सिकुड़न आ जाए ला, सिकुड़े ला उकर से एक होते होते बहुत फैले ला, इकर जो दवा दे ही एखन जैसे फफूंद फॉस्फोरस के ये दवा दे ही कार्बनडाइजिम माइकोजिम एमिस्टर टॉप रेडियोमिल और एमस्टाटो, ये दवा से ही उनके साफ हो गए।
0: टमाटर में कैसे मालूम हुए ला कि बीमारी लग लगे?
2: टमाटर में बीमारी लगे ला कि खेत में जब जाए ला तो कर इके देखी ला खेत का, ठीक है टमाटर पौधा के,

0: तीन एकड़ में रहे मक्का एखन लगाब तो ओकर खेत कर तैयारी रहे कैसे करब?
1: खेत कर एखन जो दो तीन बार जोताई कर दे ही, एक बार टोड़ो हार से और एक बार रोटावेटर से खेत कर जोताई हो जाए, घास कुछ हल्का फुल्का है और एक दो बार जोताई कर देवे, घास सफा हो जाए, उकर बाद में खेत कर तैयारी गोबर गिराए दे ही, दार बनाए देवे, दार में रासायनिक खाद और गोबर दे देव और उके उकर बाद में ढाप दे, ढपल कर बाद में ऊपरे से मकई कर दाना हो के घुसा दे, जन्मे सुविधा हुई, बहुत जल्दी जन्म जाए, जन्मल कर बाद में जैसे जन्म ले और पौधा प्रोडक्शन के नीचे जाए नहीं, उतना रंग ऊपरे भी उके दिखे हरा भरा।
0: और घर में खाद का क्या प्रयोग करी?
1: खाद का तो कहीं डीएपी और गोबर खाद ही दे ही।
0: गोबर खाद से बढ़िया
1: हो, बढ़िया हो एकदम।
0: और ये जैसे रोरे बीज के गिराए दिली और पौधा जैसे नजग गेलक, इकर देखभाल कैसे करी?
1: देखभाल तो खेत में किसान तो रोज जाइल नहीं, कहीं के कौन कोई कोना में कोई रोग तो नहीं लग है, खेत में जैसे किसान जाए तो चारों सिर देखे लगे कहीं फुफूंदनाशक तो नहीं लग है, तो किसान तो देखते ही दवा मारे लो खेत में। तो
0: स्वीट कॉर्न में सबसे बढ़िया माटी कौन सा हो?
1: इखन जो मिट्टी हो नहीं, जैसे दोमट मिट्टी हो, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी, इकर से मकई कर जड़ के सहेक ले या थोड़ा मोड़ा गर्मी से भी के सहेक कर उके पावर मिले लगा है कि बलसुआ टाड़ में नहीं उकर में तो बहुत जल्द सूख जाएला नहीं। लाल मिट्टी और दोमट में उसको सहन मिले लो के नमी रहे उकर में, नमी बनाए रखेला।
0: तो तीन एकड़ में जैसे रहे मकई कर खेती कर ली, ये कितना दिन लग जाए लेकर तैयार हो?
1: साढ़े तीन महीना लग जाए।
0: साढ़े तीन महीना जब ये तैयार हो जाएला तो जैसे एखन लगा ली और साढ़े तीन महीना कर बीच में कैसे कैसे देखभाल करी?
1: इकर देखभाल करते रहो के जैसे एक फीट हो गए मकई नहीं तो के पूरा कोड़ा करे खे के कोड़ा करके एक बार हल्का हल्का डीएपी और यूरिया देके मिला के पूरा एकदम दार कर किनारे किनारे दे देवे फणहेदना इतना, उकर बाद में पूरा मिट्टी के उकर एकदम सहन को रुके ताकि गिरे लोड संभाए उतना मिट्टी दे देवे उके, उकर बाद में के पूरा मिट्टी में चढ़ाए देवे उके।
0: तीन एकड़ में जैसे खान रौरे मक्का कर खेती करब तो इकर में पूंजी कते लग जाये?
1: पूंजी मोटा मोटी 30-35 हजार रुपये लग जाए एखन।
0: अच्छा 30-35 हजार। और आमदनी कितना हो जाए?
1: आमदनी जब इके बेचब नहीं तब तो एखन तो रेट भी बढ़िया मिली हमके बुझल, इस समय के रेट भी बढ़िया रहे लग, मकई के बारे समय खत्म हो जाए ला, जब एखन कर मकई निकली नहीं ये कम किसान एखन मकई लगाए नहीं, रेट बढ़िया मिली कर 2-3 लाख रुपये तो फायदा अपन आसान से हो जाए।
0: 30-35 हजार लगा ली और
1: 2.5-3 लाख
0: रुपया कमा ली, ती तो बहुत बढ़िया इनकम है किसान भाई बहन के खातिर,
1: रेट भी बढ़िया एखन मिली नहीं।
0: जोताई कर का साधन है?
1: जोताई तो अपन गाड़ी है साधन है पूरा, जखन जैसे मौका मिली उसने जोत दिली तो अपन गाड़ी है तो ट्रैक्टर,
0: अपन ट्रैक्टर
1: अपन ट्रैक्टर है।
0: और गाय बैल कर प्रयोग करी? लेकिन
1: गाय बैल भी है, गोबर अपन घर में भी है। तो
0: अच्छा पहले जो परंपरागत खेती होत रहे अब आप कर जो आधुनिक खेती हुआ थे तो इकर बारे में रौरे कोनो कहे चाहब किसान भाई बहन उनके?
1: एखन कर किसान बहुत ही तरक्की में है, जे ड्रिप से खेती करत है इकर में बहुत बड़ा रिस्क नखे, माने फायदा ही फायदा है, ड्रिप में खेती जब करा थी नहीं तो इकर में फल के खराब होए कर कोई चांस नखे, उकर में ड्रिप दे ही दे, ड्रिप में पूरा एकदम तार में बांध के ऊपर ले जाती नहीं। एखन जो टमाटर बता ली 4-4.5 फीट हो जाए है उके तो पूरा उके तो तार में ऊपरे चढ़ाए दे उके।
0: अच्छा लार लखे हो,
1: लार लखे हो जाते हैं तो 4.5 फीट रही तो पूरा खेत में तो बिखर जाए तो उके तो ऊपरे ले जाए ही नहीं उके टंके, तो एखन खराब हो करके तो कोई चांस न खे टमाटर के। और पहले प्लेन जो लगात रहे उकर में पूरा खेत में बीत रहे, जो पानी जब आवत रहे तो पूरा टमाटर में दाग लग जाते रहे, इकर में दाग लगे कर तो साधन न खेकर में।
0: अच्छा तो जैसे स्वीट कॉर्न या टमाटर जैसे तैयार हो जाए तो कोई खपत कैसे करी ले?
1: खपत देखा ना हमारे यहाँ तो बाजार बहुत ज्यादा है, क्योंकि रोज बाजार है, मंदरों 2 दिन लगेला, बरहम्बे तो 3 दिन लगेला, संडे इतवार बाजार लगेला, रोज बाजार है
0: तो बाजार में और खपत हो जाए,
1: बाजार में खपत हो जाला। और एक बार मोटा मोटी बात हो तो डेयरी भी दे देवी, नगड़ी डेयरी है वो भी बहुत माल के लेवेला।
0: अच्छा सुनील कि सरकार बटे से भी बहुत किसान भाई बहन मन के कुछ कुछ जो है से सहायता मिले ला। हाँ। और के कुछ सहायता मिले लेकिन सरकार बटे
1: हमके से। सरकार बट से ट्रैक्टर मिले।
0: अच्छा ट्रैक्टर मिल है,
1: ट्रैक्टर मिल है, किसान के मदद कर सरकार बहुत ही करेला, लेकिन किसान कुछ कुछ खुद भी लोज है इसलिए किसान नहीं करे, सरकार तो बहुत मदद हमके तो बहुत मदद करे सरकार। तो
0: ये बताओ कि जैसे रहो एखन ट्रैक्टर कर बात कर ली तो ट्रैक्टर और के कैसे मिल?
1: ट्रैक्टर फुल अनुदान मिल है।
0: अच्छा कैसे?
1: आय वृद्धि एक योजना है किसान कर, उकर तहत किसान के ट्रैक्टर मिलेला ही मिलेला।
0: अच्छा उकर खातिर का करे खोले किसान भाई?
1: उकर ले किसान महासभा में एक मेंबर बने खोला, जब मेंबर बने खोला तो किसान महासभा प्रोसेस

0: में लगा लो के सरकार से मांग करेला कि हमारा किसान जो है इनको ट्रैक्टर दिया जाए, तो सरकार देखे ले कि वास्तव में किसान है तो ट्रैक्टर तो देवे लो के जो हमारे ट्रैक्टर है खन सरकार का देवल।
1: तो बीघा जी रवरे हमारे स्टूडियो में आली और किसान भाई बहन मन के अपन खेती बाड़ी कर अनुभव शेयर कर ली, तो इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जोहार जोहार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
6: संगे किसान वाणी कार्यक्रम के बेरा सिरालक ई कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
7: और प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची।
6: तो सुनुजा भाई बहन मने अबरारन कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
7: जुगनी बहन के देव विदा
6: जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। कुछ ही पलों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे तमाम श्रोताओं को सुनील का प्यार भरा नमस्कार। ये पहला खत हम शामिल कर रहे हैं चेपाकला बड़कागांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी और प्रियंका दीपिका। रेलवे स्टेशन हजारीबाग से ये खत है शमीम अहमद, निखत परवीन, एहसान अहमद, तहसीन बानो, आरजू परवीन, नसीम अहमद, खलील अहमद, निसार अहमद और नूरजहां बेगम। और श्रोताओं ये खत है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। ये खता है बड़ी बाजार चाईबासा से मोजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, नबीहा, सानिया, परी और अमान का। इंद्रपुरी चौक हजारीबाग से ये खत लिखा है हमारे लिए अरविंद ठाकुर और दिलीप ठाकुर ने। श्रोताओं आपकी पसंद पर हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, फिल्म का नाम है आंखियों के झरोखे से, गायिका है हेमलता।

और श्रोताओं, ये खत आया है ग्राम सिंघानी पोस्ट कोरा से सुमन रानी, अनुराग राज, रूबी देवी और श्री प्रसाद। और ये खत आया है महलोनिया पोस्ट झरपो से सुदामा देवी, अर्जुन महतो, रामचंद्र कुमार, नयन कुमार, श्वेता रानी, सुनील कुमार और डाबरलाल का। जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन। और श्रोताओं, ये फरमाइशी खत आया है कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद इफजाल इब्राहिमी, जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम वली और मोहम्मद अफजाल मल्लिक का। और ये खता है श्रोताओं बड़का गांव से मेन रोड से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा तथा उनके ढेर सारे मित्रगण। तो आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हजारीबाग पत्रातो से एक हता है बैसिलखल को मधु ऋतु रसना मीतू श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण नदीम मनीषा सोरेन और उनके समस्त परिवार। बेरडी से हुकुम करमकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची करमरकर और तनु करमरकर। और श्रोताओं ये खत आया है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल रीता देवी शिल्पा कुमारी और आकाश कुमार का।

श्रोताओं ये कथा है धुर्रा बांधा भाटापारा से, प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। बिरडी से, क्षमा करेंगे श्रोताओं, ये कथा है मटवारी हजारीबाग से जय चटर्जी और बोनी चटर्जी का। और बरकाना से ये कथा है भानु पासवान, अशोक पासवान, वकील नागेश्वर, शांति, शोभा और दिलदार का। इंदिरा विहार रायगढ़ से ये कथा है वशीम अक्रम नूरजहां, डब्लू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम नूरजहां, उल्लाह अक्रम नूरजहां का। और राजनाद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा का। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी का।

आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, राही सरिता ग्वानकर और प्रिंस एकांश ग्वाहकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वानकर, प्रणीता ग्वानकर, अर्जुन ग्वानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वानकर, सुमित ग्वानकर और कुमारी ध्वानी ग्वानकर। और श्रोताओं, ये खता है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमरदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल का। मगनपुर से ये खता है अमजद अली, अब्बास आलम और आलम अली का। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का।

श्रोताओं, ये खत आया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा का। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये खत आया श्रोताओं, हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक और मीका वीरक का। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश का।

श्रोताओं, ये खता है कोह का भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार जंघेल, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि कोशिका ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। और श्रोताओं, ये कथा है ग्राम लोहोडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीष देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी का। और ये खत भेजा है ग्राम पंजौनिया जिला जानौल उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।

0: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये खता है श्रोताओं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही और मेहराज जहां का। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिपा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, शफरुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। और जेल रोड मथुरा से वशीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार का। कन्यादा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नशीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, शालिया शोएब खान, शायमा खान, मुज्तबा खान, आफिया खान, राऊ भाई और शहीद भाई का।
1: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
2: नहीं।
1: तो फिर देखो शोभा,
2: तो मैं समझूंगी वो लड़की।

0: श्रोताओं, ये था आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, जिसका सफर आपने तय किया अपने दोस्त सुनील के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र पर, जहां से क्रमशः समाचार संध्या और News@9 आप सुनेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं।

0: राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपये पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social

ये है देश की सुरील धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामी ने विजेता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे, जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे।
2: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
3: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

0: विजेता पंडित ने अपने समय के लगभग सभी बड़े और नामी कलाकारों के साथ नायिका की भूमिकाएं निभाई।
1: सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया।
0: अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगे।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामयिक बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार, हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीकंठा। आज के इस कार्यक्रम में हमने पिरोया है हिंदी फिल्मों के उन गीतों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं सावन के गीतों को। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत रजनीकंठा में सुनील की ओर से।
1: के रिमझिम फुहारों से सजे संवरे हिंदी सिनेमा के गीतों के तरानों के साथ आपका स्वागत है। सुनील की ओर से नमस्कार। दोस्तों, सावन मात्र एक महीना ही नहीं है, सावन है उत्साह, उमंग और हरियाली का प्रतीक। प्रेमी जोड़ों के उत्सव का प्रतीक है सावन। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जीवन के विविध आयामों के गीत रचे गए हैं। विभिन्न अवसरों त्योहारों के गीत भी खूब रचे गए हैं और ये गीत जब साज और आवाज के साथ हमारे बीच आए तो हमारे मन मस्तिष्क पर छा गए और ऐसे छाए कि समय की धूल भी इन्हें छुपा ना पाई। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वैसे गीत सुनवाएंगे जिनमें सावन न सिर्फ सुनाई देता है बल्कि इन गीतों में सावन दिखाई भी देता है। बरसती फुहारों में भींगे तन मन को ये गीत आज भी हमें नई उमंगों तरंगों से भींगो डालते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1944 की फिल्म रतन से। जोहरा अंबालीवाले की आवाज है। इस गीत में विरह वेदना है, सावन में पिया से बिछड़न की टीस भी है।

0: दोस्तों 1947 में एक फिल्म आई थी आगे बढ़ो। सावन की घटाओं को महसूस कराता यह गीत गाया है मोहम्मद रफी और खुर्शीद ने।
1: सावन की घटाओ धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना, सावन

दोस्तों 1950 की फिल्म जोगन के इस गीत में नायिका सावन की घटाओं को रुकने को कह रही है, क्योंकि उसका साजन अभी घर नहीं आया है।

तो 1953 की ब्लॉकबस्टर दो बीघा जमीन तो याद है ना आपको। इस फिल्म में सावन का यह गीत गवाई उत्साह उमंग से सरापुर है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है तलत महमूद ने। फिल्म का नाम है रेशमी रुमाल। 1961 में प्रदर्शित हुई थी यह फिल्म।

दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे वो है 1964 की फिल्म सांझ और सवेरा का। इस गीत में बीतते सावन को लेकर बिछड़े मनों की स्थिति क्या होती है, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। आवाज सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की है।

दोस्तों सावन में झूला तरुणाई का एहसास कराता है। सखियों के साथ बिताए क्षण अक्सर याद आ जाते हैं। बहू बेगम फिल्म का यह गीत है। 1967 में आई थी यह फिल्म। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने।

जब याद किसी की आती है, यह फिल्म आई थी 1967 में। जो गीत हम आपको सुना रहे हैं उसे गाया है लता मंगेशकर ने। सावन जैसे मौसम में उनसे मुलाकात ना हो तो फिर दिल से तो यही आवाज निकलेगी ना।

0: दोस्तों, जब भी सावन के गीतों की चर्चा होती है, बरबर सिंह 1967 की फिल्म मिलन का गीत हमारे मन में उभर आता है। आप भी सुनिए, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया है।
1: जी।

दोस्तों 1969 में एक फिल्म आई थी आया सावन झूम के। सावन की जितनी भी खूबियां हैं लगभग इस गाने में आपको मिलेंगी। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

दोस्तों, जीवन है तो उमंग है, उत्साह है और सपने भी हैं। 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु का यह गीत भी शायद यही संदेश दे रहा है। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मेरा गांव मेरा देश। दोस्तों यह फिल्म आई थी 1971 में। जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है लता मंगेशकर ने 1974 के फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत है यह। दोस्तों प्रेम का बंधन हो और मौसम हो सावन का तो फिर कोई क्या क्या नहीं कहता।

दोस्तों फिल्म चिपके चिपके रिलीज हुई थी 1975 में। इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज है और सावन का विरह भी है। आनंद लीजिए इस गीत का।

दोस्तों 1979 की फिल्म मंजिल का यह सावन गीत किशोरदा की आवाज में खूब सुना जाता है। आज इस गीत के फीमेल वर्जन का लुत्फ आप उठाइए, आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गाना 1989 की फिल्म चांदनी का है। सुरेश वाडेकर की आवाज में गूंजते इस गीत में अपेक्षा भी है, अभिलाषा भी। आइए सुनते हैं।

दोस्तों सावन के वो झूले ही हैं जिसे याद कर परदेसी घर लौटने को विवश हो जाता है। कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति है इस गीत में। फिल्म का नाम निकाह है, आवाज मोहम्मद अजीज की।

दोस्तों, साजन के बिना कैसा सावन, शायद इन्हीं भावों को इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म है 1991 की सनम बेवफा, आवाज लता मंगेशकर की।

0: दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता साजन, सजनी और सावन शायद एक दूसरे के पर्याय हैं? अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उस गीत में नायिका की ख्वाहिश तो सुनिए जरा, आवाज सुषमा श्रेष्ठ की।
1: बरसा...

दोस्तों 1994 में एक फिल्म आई थी साजन का घर। जो गीत आप सुनेंगे उसे कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया है। सावन किए जितने भी प्राकृतिक अवयव हैं सभी समाहित हैं इस गीत में।

0: दोस्तों, कार्यक्रम से अब विदा लेने का वक्त आ गया है। बसीर बद्र साहब के इस कलाम के साथ सुनील को दीजिए इजाजत। तुम छत पे
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित है अभिनेता राज कपूर पर।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हजारीबाग और आप सुन रहे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित है राज कपूर पर फिल्माए गए कुछ गीतों पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित था अभिनेता राज कपूर पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।